You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों में तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.3

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ने।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: Fazza, for all your information, communication and entertainment needs.
9: Radio Fazza.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी।
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: This is a public service announcement.
7: The station
8: that plays
9: foot tapping music.
10: Azar 97.1 FM.
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: 4NW, Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: Attention!
2: Property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं
3: सलासा ट्यूशन सेंटर
4: जी हाँ इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता
4: मसला ही कोई नहीं सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ
5: जी हाँ आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231 कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.
12: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.
13: You are playing. We are playing Faza 97.1 FM.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beats.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: हाँ जी, क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2 ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beat.
8: Wow, FM.
9: Only tune super hit channel.
10: Fizz on 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स

0: हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-732।
2: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station.
6: That plays.
7: Foot tapping music.
8: Hazar 97.1 FM.
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Back to back, back to back, hip hop, music.

0: You are listening 97.1 FM.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
3: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
3: टेस्ट भी वाइब भी।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2.

0: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम।
1: के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट।
3: इट्स कमर्शियल टाइम।
4: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
9: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
8: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
9: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
8: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
9: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
8: Park Foods, जो नाम है मायार का।
11: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
12: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
11: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
12: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
11: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम है और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, स्पेशली आज जुमातुल मुबारक का दिन और माह रबीउल अव्वल भी है, सरकार की आमद का जो महीना है और सरकार इस आमद जिस महीने में तशरीफ़ लेके आए, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, मुख्तलिफ तारीखें मुख्तलिफ जगहों पर आती हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ पे मोस्टली जो हमारे फुकहा हैं, जो मुहद्दिस हैं, वो इत्तफाक़ करते हैं वो जना 12 रबीउल अव्वल है, यानी जिसमें मेजॉरिटी आती है। तो सामीन, इस खूबसूरत से सफ़र में खूबसूरत सी बातें, खूबसूरत सी चाहतें और खूबसूरत से लोग हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि जो जहाँ पे भी हमें सुन रहा है इस वक्त नॉटिंघम शहर से, आपसे गुजारिश है कि डेफिनेटली हमसे रब्ता कीजिए। रब्ता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 01157100971 ये डायल करेंगे और फिर आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ, हमारे मेन जो स्टूडियो का लाइव सेशन है उसमें, और लाइव सेशन में शामिल होने के बाद आप मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, नॉटिंघम शहर से किस जगह से सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी जो अनाउंसमेंट है वो सबसे पहले ये देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं और आप चलते हैं आज के वेदर अपडेट की तरफ के मौसम का सूरत हाल आज का क्या है। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है, 10 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा और इस वक्त जो खूबसूरत सी बारिश का मंजर है, खूबसूरत सी बारिश है हमारे नॉटिंघम शहर में और स्पेशली गिरदोनवा में, जहाँ जहाँ पे बारिश हो रही है इस वक्त आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा। कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पर बारिश नहीं है, 68% इस वक्त ह्यूमिडिटी का लेवल है फिज़ा में। और आपको एक और चीज़ बताते चले कि जो मूसलाधार बारिश है इसमें अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ऐसी रहमत, ये मेरा अपना अकीदा है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी थॉट है कि जिसमें एक ऐसी रहमत जो थोड़ी सी ना जहमत का बायस भी बने, जिसमें लोगों को, जिसमें अकीदे वालों को, जिसमें मुस्लिम सोसाइटी को, गैर मुस्लिम्स को, जितनी भी हमारी साउथ एशियन की कम्यूनिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको मुहतात होकर चलना पड़े। बारिश स्लिपरी है, बारिश थोड़ी किसी जगह पे, किसी जगह पे ज़्यादा है, बूंदाबांदी हो रही है और किसी जगह पे आपने गाड़ी को बहुत एहतियात से चलाना है, कोई पेडिस्ट्रियन पे लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड को, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान कीजिएगा। पेट्स साथ होते हैं लोगों के सुबह का टाइम, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा केयर करते हैं इंसान रहमत के टाइम, ब्लेसिंग के वक्त, वही ब्लेसिंग ज़्यादा उस पर असरअंदाज होती है। इसी तरह जब भी आप पे कोई ब्लेसिंग्स वैसे भी आए ना, आपकी रोज़गार अच्छा हो, आपकी कारोबार अच्छा हो, आपके हल्का अहबाब अच्छा हो, तो फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस वक्त भी केयर करें, हल्की छोटी छोटी बातों से केयर करें कि कहीं आपकी वजह से किसी का कोई दिलखराश लेवल तो नहीं आ गया या कोई परेशान तो नहीं हो गया आपकी वजह से।

इसी सारे अपडेट के साथ, इसी ब्लेसिंग्स की अनगिनत अकाउंटेबिलिटी के साथ, जो इस वक्त नॉटिंगम शहर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 11 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया जा चुका है।

हजरत अम्मी कदर, अगर हम देखे ना या इस चीज पे थोड़ा सा सोच विचार करें या इस चीज को थोड़ा सा हम जरा फोकस में लेके आए, तो इंसान के पास बेसिकली जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक ताकत होती है और एक कमजोरी होती है। हर जगह पे आप देखेंगे कानून है कुदरत का, बल्कि हमारी दुनिया का ये दस्तूर है, रूल है कि जहाँ पर भी आप देखते हैं, जहाँ पे भी आप सुनते हैं, जहाँ पे भी आप चाहते हैं, वहाँ पे हमेशा ताकत का जोर रहता है। ताकत हमेशा ताकत वाले दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर उसको अपनाते हैं, अपनी अप्रोच दिखाते हैं, पैसे की अप्रोच दिखाते हैं, हर जगह पे ताकत और दस्ते बाजू के ज़ोर से उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। लेकिन कुर्बान जाए, सरकार का दर एक ऐसा दर है जिस दर पे कमज़ोरी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और कुर्बान जाए कि खूबसूरत से शायर हैं, बहुत ही प्यारा कलाम उन्होंने लिखा है, अलगर्ज मुझे अब नाम नहीं याद, लेकिन उनका एक जो शेर है वो मैं अपने प्रोग्राम में आपके साथ शामिल करना चाहता हूँ। जो बाज़ोक लोग मेरे पास मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है कि डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम में शरीक हों। व्हाट्सएप पे आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, फ्री कॉल है, डेफिनेटली आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में। बहुत ही ज़बरदस्त सा शेर, ज़ौफ बेसिकली कहते हैं, ज़ईफ़ से निकला है ज़ौफ, ठीक है जी, कमज़ोरी। शायर कहता है कि ऐज़ौफ मदद कर दरे आका पे गिरा दे, ऐज़ौफ मदद कर दरे आका पे गिरा दे, दरबान कहें उठ कहूँ उठा नहीं जाता, दरबार कहें उठ कहूँ उठा नहीं जाता। यानी सरकार के दर पे ऐ कमज़ोरी तू मेरे काम आ, तू मेरी ताकत बन, तू सरकार के दर पे मुझे गिरा दे ताकि दरबान आए उठाने के लिए। वो जो शुरते होते हैं ना वहाँ पे, जो आवाज़ देते हैं ये लहजी अल्लाह रोह रोह रो, ये आवाज़ देने वाले जो दरबान हैं उनकी आवाज़ आए भी, और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि वल्लाह मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं चल सकता। ऐसी कमज़ोरी जब रियाजुल जन्ना में या सरकार के कदमैन में आप बैठ के सरकार से मांगे, तो फिर ये कमज़ोरी भी आपके लिए बहुत बड़ी नियामत बनती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनती है। और ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में भी इरशाद फरमाती है कि ऐ ईमान वालो, किसी स्पेशल फिरके का जिक्र नहीं किया गया उसमें, ऐ ईमान वालो, अगर ये चाहते हैं कि हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, हमसे कोई गलती सरजद हो गई है, हमसे कोई प्रॉब्लम हो गई है हमसे, तो फिर क्या करो, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो तो एक बार शराफत से पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई भी मुसीबत आए और फिर मेरे दर के, मेरे सरकार के यानी मेरे महबूब के कदमों में आ जाओ, वहाँ के दुरूद सलाम का नजराना पेश करो, मैं तुम्हारी खताएं बख्श दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा जैसे तुम बिल्कुल पाक साफ होकर निकले हो। सामने इसी सिलसिले की एक बहुत ही खूबसूरत कड़ी हमारे नॉटिंघम शहर में मुनक़द होने जा रहा है प्रोग्राम महफिल मिलादुन्नबी के हवाले से, जहाँ पे बहुत ही हमारे साउथ एशिया के फेमस सनाफान मुस्तफ़ा, जिनको आप लोग टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन चीज़ों पे सुनते हैं, या हमारे यूके में स्पेशली मुख्तलिफ जगहों पे, लंदन में, बुलेटिन में, आगे पीछे वो काफ़ी प्रोग्राम भी कर चुके हैं, ये खूबसूरत से सनाफान मुस्तफ़ा सब एक साथ होंगे, मैं बतदरीज उनका नाम भी लूँगा। क्योंकि सरकार की महफिल है, सरकार का मिलाद है, और इस मिलाद को हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाना है। हमारे नॉटिंघम शहर के जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, जो मुझे इस वक्त सुन रहा है, हमेशा आप लोगों ने जितने भी इवेंट हुए हैं उन पे आपने अपना पूरा एक जज्बा दिखाया है, लेकिन यहाँ पे आपका जज्बा ईमानी काम आएगा। जनाब महफिल मिलाद नबी मुनक़द होने जा रही है एक्सेलसियर नवाब में, 527 लॉटस रोड नॉटिंघम, जहाँ पे हमारे सारे इवेंट रेडियो फजा के होते हैं, और डेफिनेटली जो रेडियो फजा इसमें मीडिया पार्टनर भी है। जहाँ पे जनाब हमारे नॉटिंघम के, बल्कि हमारे यूके के, हमारे इंग्लैंड के बहुत ही जबरदस्त से होस्ट, जिनको आप नकीब महफिल कह लें, एंकर कह लें, एक ऐसी इनकी आवाज़, एक ऐसी इनका जादू, एक ऐसे इनके अल्फाज होते हैं जो हमेशा हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं। फिर वो कोई भी प्रोग्राम हो, वो जुमे के दिन आने वाला दरवेशाना सफ़र हो, या फिर आप कह रहे हैं कि शाम रमदान हो, यानी किसी हवाले से भी आप देखें, द ग्रेट एंकर एंड द होस्ट ऑफ आवर नॉटिंघम सोसाइटी, स्पेशली हमारे नॉटिंघम के शान हैं हुनैन मसूद, ये करेंगे जनाब नकाबत महफिल की, और उसके साथ हमारे दिलों की धड़कन। अब देखें कम्बिनेशन कितना खूबसूरत है, हुनैन मसूद साहब हमारे पास होस्ट हैं, उसके बाद कारी शाहिद महमूद कादरी,
क्या ही जबरदस्त है सनाफान मुस्तफ़ा, जहाँ पे एक बार जाके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं या अस्माए हुस्ना पेश करते हैं या कोई भी कलाम वो पढ़ते हैं, वो एक अपनी अलग पहचान रखता है। नात की दुनिया में इन्होंने डिफरेंट तरीके से अपने आप को बनाया। शाहिद महमूद कादरी पाकिस्तान के अजीम सनाख्वान मुस्तफ़ा में से इनका शुमार होता है और उसके बाद ये भी मौजूद होंगे, स्पेशल अपीयरेंस भी है इनकी, बहुत ही खूबसूरत सी महफिल होने जा रही है। उसके बाद मौजूद होंगे जनाब सैयद हसनुल्लाह हुसैनी, बहुत ही कमाल के खूबसूरत से नन्हे मुन्ने सनाख्वान मुस्तफ़ा, ये भी होंगे। और उसके बाद अक्से रूह मैमन जनाब अलहाज यूसुफ मैमन साहब के साहबजादे हैं जो अलहाज हाजी हुसैन यूसुफ, वो भी मौजूद होंगे। वसीम अब्बासी साहब मौजूद होंगे और उसके साथ तौफीक अहमद तौफीक। ये जनाब तमाम सनाख्वान मुस्तफ़ा आपको एक जगह पे मिलेंगे। होस्ट हैं हुनैन मसूद और ये खूबसूरत सी महफिल मिलादुन्नबी मुनक्कद होने जा रही है हमारे एक्सेलसियर नवाब में, 527 लॉटस रोड नॉटिंघम NG51EL। 6 PM पे ये स्टार्ट हो जाएगी मंडे वाले दिन 7 September 2026। और आपको ये भी बता दें कि जनाब इसमें ज़बरदस्ती जो खूबसूरती है, जो हमारी मेमोरेबल इवनिंग है, वो कैसे मज़ीद खूबसूरत बनेगी, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। आपने बेदरेग हो के अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हर बंदे ने तशरीफ़ लाना है और इस जो महफिल है, इस मिलादुन्नबी की जो महफिल है, इसको आप कामयाब करेंगे। बेसिकली कहते हैं ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो इस 7 September 2026 मंडे को 6 PM, बल्कि मुझे उम्मीद है कि 5 PM ऑनवर्ड रश उसी तरह होगा, गाड़ियों की पार्किंग का मसला होगा, लंबी क्यू होगी जैसे कि चांदरात और मुख्तलिफ इवेंट्स पे होती है। इस बार सरकार की महफिल में इतनी खूबसूरत सी एक आप कह लें कि जगमग वाली महफिल होगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने सितारे बहुत ही कम ही एक स्टेज पर इकट्ठे होते हैं। और ये सारा आपको इस पर मिलेगा एक्सेलसियर नवाब में। तो जनाब जल्दी जल्दी शामिल हो जाइए, कोई इसकी एडवांस बुकिंग नहीं है, सिर्फ आपने अपना ज़ौक लेके, अपना शौक लेके, सरकार की जो इश्क की जो एक अंदर हमारे हल्की सी शमा जल रही है ना, छोटी सी शमा टिमटिमा रही है, वो चिंगारी है, उसको लेकर आपने आना है। और फिर ये खूबसूरत सनाख्वान मुस्तफ़ा और जितनी भी खूबसूरत जो एक नूरानी माहौल होगा, नूरानी कैफियत होगी, वो आपको डेफिनेटली जनाब उस जो चिंगारी है उसको एक बहुत बड़ा भांबड़ आपका बना देगी। और फिर आपके पास दुनिया जहाँ की बेशुमार दौलतें भी हों, तो फिर भी सरकार की जो दी हुई इश्क की चिंगारी है वो सब पे भारी है, डेफिनेटली भारी है। आप लोग हमारे साथ रहेंगे, इस चीज़ का एहसास रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप 0115-710-0971 पे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वेन्यू का बता दिया, मंडे 7 September में, आगे भी अनाउंस करता रहूंगा, 10 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। कहते हैं ना कि जब आप सरकार के पास लेके जाते हैं, तशरीफ़ लेके जाते हैं, ये सरकार की महफिल मुनक्कद करते हैं, मिलादुन्नबी का जश्न मनाते हैं, तो फिर सरकार खुद आप पे इनायात करते हैं, ब्लेसिंग्स अनगिनत होती हैं और वो ब्लेसिंग्स सरकार की तरफ से होती हैं। तो फिर बहुत ही खूबसूरत से कलाम है मेरे पास जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बहुत ही अजीम जो शायर हैं, नात को शायर थे, जिस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, मोहम्मद इकबाल अजीम साहब का ये खूबसूरत सा कलाम है। और इस कलाम को मैं आगे प्ले करने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम के बीच में मेरा दिल है कि आपको भी थोड़ा सा जिस तरह मुझे ये कलाम पढ़ के ना एक रूहानी कैफियत हो जाती है, खूबसूरती आ जाती है, रूह में रूह पाक हो जाती है, मुतव्वर हो जाती है और उसके साथ साथ मुअत्तर हो जाती है, इस तरह की ये सारी चीज़ें मैं आप में भी उंडेलना चाहता हूँ। शायर कहते हैं कि मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूँ। अब खूबसूरत सा कलाम है, इसको सुनिएगा, दो चार शेर इसके मैं आपके सामने रखूँगा। आने वाली है उनकी सवारी, फूल नातों के घर घर सजा दूँ, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्में जला दूँ, मेरी झोली में कुछ भी नहीं है, मेरा सरमाया है तो यही है, अपनी आंखों की चांदी बहा दूं, अपने माथे का सोना लुटा दूं। और खूबसूरत सी बात यह है कि मोहम्मद इकबाल अजीम बेसिकली नाबीना थे,
लेकिन कुर्बान जाएं, इश्क की जो बिनाई है ना वो इतनी तेज होती है कि जाहिरी बिनाई उसके सामने बहुत फीकी पड़ जाती है। और कुर्बान जाएं कि क्या अल्फाज का जादू निकाला उन्होंने, और अल्फाज के जादू में से जो उन्होंने तराशते हुए लफ्ज निकाले हैं एक बार रूह तक काम जाती है, रोंगटे गालिबन यकीनन खड़े हो जाएंगे आपके भी। बहुत ही प्यारा शेर के एक नाबीना आदमी क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बेनिगाही पे मेरी ना जाएं, बेनिगाही पे मेरी ना जाएं, दीदावर मेरे नज़दीक आए। जो आंखें रखते हैं ना, जिनको ज़ाहरी बिनाई नज़र आती है, वो लोग मेरे सामने आए। बेनिगाही पे मेरी ना जाएं, दीदावर मेरे नज़दीक आए, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका सिखा दूं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका सिखा दूं। और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत सा एक मज़ीद ईमान को उजागर करने वाला, ईमान को मज़ीद खूबसूरत बनाने वाला ये शेर है कि रोज़ाए पाक पेशे नज़र है, रोज़ाए पाक पेशे नज़र है। जब आप किसी महफिल में जाते हैं ना, किसी मिलादुन्नबी के प्रोग्राम में जाते हैं, जब आशिकान मुस्तफ़ा इकट्ठे होते हैं, जब दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं, और फिर जब दुरूद व सलाम की सदाएं इस तरह बुलंद होती हैं कि पूरी जो महफिल है वो रूहानियत का एक गढ़ बन जाती है, आपको यकीन करें कि रूहानी फरिश्ते अगर आप इश्क की बिनाई रखते हुए उनको देखें तो आपको वो फरिश्ते नज़र आते हैं। आपको वो बदर वाला मुकाम याद आ जाएगा कि जब थे उनके पास दो घोड़े, छह जर्रे और आठ शमशीरें, पलटने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीरें। और कुर्बान जाएं, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने ज़िंदगी में सामीन सिर्फ एक दुआ ऐसी मांगी थी कि जिसमें इफ़ कंडीशन लगी थी। और जो लोग बिज़नेस मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि जब बिज़नेस मैनेजमेंट की या मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है तो उसमें इफ़ कंडीशन कहाँ पर यूज़ होती है। ये इतनी सख्त कंडीशन है कि जहाँ पर आपने डू एंड डाई का डिसीजन लेना होता है, यानी कंपनी लिक्विडाइज हो जाती है, मैनेजमेंट बंद हो जाती है, ये इस लेवल पे इफ कंडीशन यूज़ होती है। तो सामीन, सरकारे दो आलम ने, सरकारे दो जहां ने, इस खूबसूरत सरकार ने, हमारे प्यारे कमनी वाले सरकार ने एक बड़ी प्यारी सी दुआ मांगी, उस दुआ में इफ कंडीशन यूज़ की ज़िंदगी में एक बार, और फिर सारी ज़िंदगी उस इफ कंडीशन का शुक्राना अदा करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे महबूब, ऐ इस जहान को बनाने वाले, ऐ सारी कायनात के मालिक, अगर आज तेरी मदद और नुसरत ना पहुंची तो फिर सफाए हस्ती पे तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। तो फिर सामीन, तारीख ने ये देखा कि जहां पे एक तलवार चलती थी और कुफारे मक्का के 10 सर गिरते थे, तो यही वो मौका था, यही वो रूहानियत थी जो हो सकता है आपको भी नजर आए, आपको भी रूहानी फरिश्ते नजर आए, आपकी भी रूह ताज़ा हो 7 सितंबर मंडे वाले दिन, सोमवार को 6 PM ऑनवर्ड आपने लाजमी आना है। अब उसी के हवाले से मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा था कि रोज़ाए पाक पेशे नज़र है, सामने मेरे आका का दर है। तो जो जहाँ पे भी बैठा हो ना, किसी महफिल में शरीक हो, आप अक्सर लोग ना बात करते हैं कि यार महफिल तो बंदा दिल पाक होना चाहिए, हम बिजी हैं, ये हैं, स्टार्ट ऑफ द वीक है, हर चीज़ को तर्क कर दें, सरकार का मिलाद दोबारा नहीं आएगा। आपके पास मौका है इस 7 सितंबर को, हर मौका आपको रेडियो बजा 97.1 FM या एक्सेलसर नवाब या बाकी भी जितने हमारे प्रोमोटर्स हैं वो देते हैं, क्योंकि इट्स कम्युनिटी वर्क। हमने जहाँ पे आपकी अफजाइश नस्ल, हमने जहाँ पे आपकी नमूद व नुमाइश, हमने जहाँ पे आपकी सिविलाइजेशन, हमने जहाँ पे आपकी एजुकेशन, हमने जहाँ पे आपकी बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, हर किस चीज़ का ध्यान रखना है बींग अ कम्युनिटी वर्कर और बींग अ कम्युनिटी कंसल्टेंट, तो फिर ये भी हमारा फ़र्ज बनता है कि हम आपकी रूहानी ताजगी भी करें, हम आपकी रूह को पाक करने में भी कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डालें। तो जनाब, वो हिस्सा हमारी तरफ से डल चुका है। शेर कहता हूँ कि जनाब, मुझको रोज़ाए पाक पेशे नज़र है, रोज़ाए पाक पेशे नज़र है, सामने मेरे आका का दर है। आया है, रोज़ाए पाक पेशे नज़र है, सामने मेरे आका का दर है, मुझको क्या कुछ नज़र आ रहा है तुमको लफ्ज़ों में कैसे बता दूँ। और जो सरकार की महफिल में बैठ के आंसू बहा देते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता हैं उनकी यादें, मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता हैं उनकी यादें, इनकी मंजिल है खाके मदीना, ये गुहर में यूं ही कैसे लुटा दूं। और आखिर में

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ मौजूद है और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग नॉटिंघम, जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन, और जिसके हवाले से सरकार ने कहा कि ये सरदारुल अय्याम है, यानी तमाम दिनों का सरदार, यानी पूरे वीक में आप जितने भी, हम स्पेशली मैं अपने आप को मिला के कहता हूँ कि हम जितनी भी कोताहियाँ करते हैं, हम जितनी भी गलतियां करते हैं, हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है या फिर हमसे कोई भूल हो जाती है, तो ये जुमातुल मुबारक का एक ऐसा दिन है कि जिस दिन आप अपनी तमाम गलतियों का, गुनाह सगीरा जो होते हैं उनका खुमियाजा भुगत सकते हैं, यानी सरकार आपको मुआफ़ करने के लिए तैयार है। आप लोग, हम लोग खुमियाजा भुगतने के लिए रेडी हैं, लेकिन सरकार की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी नियामतें हैं कि वो हमें बख्शवाने के लिए तैयार हैं। तो जुमातुल मुबारक के दिन सुबह के टाइम फ्रेश होके नमाज पढ़ के हल्की सी रेस्ट कीजिए, अपने काम पे जाने से पहले दुरूद सलाम का नजराना पेश करिए, और खुशगवार माहौल के अंदर, खुशगवार कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनके साथ खूबसूरत तरीके से सलाम दुआ कीजिए, और उनको बताइए कि जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन कितना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए।

बिल्कुल जी, उनका मंगता है जो मंगता नहीं होने देते, और आका तो फिर किसी को भी रुसवा नहीं होने देते। सामीन, 2 से 3 मिनट की कलाम चलेगा, उसके बाद हमारे दरमियान हायल होगी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के उस पार में दोबारा आपके साथ हाजिर होऊंगा। सुनिए खुशो खुशो के साथ इस कलाम को जुमा मुबारक के बाबरकत दिन पे।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नोटिगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन
7: दैट प्लेज
6: फुट टैपिंग म्यूजिक।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

सो वेल, साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन को भी बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। किस तरह से करना है आपने इंस्टॉल तो मैं बता देती हूँ। आपको तो आना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM। और आने वाली पहली एप्लीकेशन, जी हाँ, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन आप सभी की स्क्रीन्स पे पॉप अप कर रही है, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो आपने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसे कर लेना है इंस्टॉल। और ये वो सभी तरीके हैं जिनसे आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और प्रोग्राम में शमूलियत कर सकते हैं। सो दे लिसनर्स, अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। सो हमारा ये साथ तो रहेगा बरकरार। सो इस बीच हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मौजूआत पे गपशप करें, कुछ आज के दिन के हवाले से, कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से और फिर कुछ हमारी डिवास की पर्सनल प्रेफरेंस के हवाले से। सो दे लिसनर्स, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक अदद प्यारा सा, खूबसूरत सा, सोलफुल सा कलाम। सो ये लिसनर्स, आप सभी से मुलाकात होती है कलाम के उस पार। सो तब तक आप ये खूबसूरत सा कलाम एंजॉय करें।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। जी तो लिसनर्स, आज का दिन थोड़ा सा खास है क्योंकि आज है जुमतुल मुबारक, यानी एक ऐसा दिन जो सिर्फ हमें इबादत की ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को दोबारा देखने, अपने रब को याद करने और अपने दिल को सुकून देने का मौका फराहम करता है। अगर आप इस वक्त घर में हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या फिर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या बस चाय का कप लेकर रेडियो सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी सारी फिक्रें साइड पर रखिए और इस खूबसूरत सी सुबह को अल्लाह का नाम लेकर शुरू करिए। सो बेसिकली जुमा हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ काम, पैसे, स्टडीज, करियर और डेली रूटीन के कामों के लिए ही नहीं बनी। हाँ, दुनिया में मेहनत करना ज़रूरी है, अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल करना भी ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स को खुश करना, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना और अपने गोल्स को अचीव करना, लेकिन इन सब के साथ अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत करना सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात है। कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अल्लाह की कुदरत को बिल्कुल भूल जाते हैं। सो जुमे का दिन हमें रुक कर ये याद दिलाता है, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। सो कभी कभार होता है जब जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा आप ना उम्मीद हो जाओ या फिर आपको ऐसा लगने लगे कि बस अब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद कोई गोल बाकी नहीं रहा, तो उस वक्त आप इस चीज़ को याद किया करें कि ज़िंदगी का एक पार्ट सिर्फ ये है, इसके अलावा ज़िंदगी बहुत वसी है और ये सब तो दुनियावी रुकावटें हैं। इंसान का जो असल मकसद है वो है अपने गॉड के साथ यानी अल्लाह के साथ एक अच्छा पायदार कनेक्शन बिल्ड करना। सो अगर आपका ये कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड हो चुका है या फिर आप हैं अपने परवरदिगार के सबसे करीब, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी दुनियावी ज़िंदगी में कितने मसले मसाइल चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं उनकी ज़िंदगी के तमाम तर मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं।

वैसे भी जैसे कि हमारा कोई भी वीक स्टार्ट होता है तो हमेशा वो मंडे से स्टार्ट होता है. सो मंडे को जिस तरह से हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमारा मेन फोकस इस चीज़ पर होता है कि किस तरह से हम इस वीक के गोल्स को जल्द अज जल्द अचीव कर लें या फिर ऐसे स्ट्रेटजीज बनाएं जिनसे हमारा ये जो पूरा वीक का काम है वो फौरी तौर पर अच्छे से हो जाए, हम बहुत ज़्यादा कामयाब हों, सक्सेसफुल हों. लेकिन जो फ्राइडे का डे है वो एक रिमाइंडर है इस चीज़ की तरफ कि तुमने बहुत मेहनत कर ली इस दुनियावी जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है उस जिंदगी के लिए भी जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो या फिर तुमने इस दुनिया से वापस उस दुनिया में जाना है. हम इंसान बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लालची कह लो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए दुनिया में बहुत सारी आसाइशें, माल, दौलत, पैसा, गाड़ी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी इस आरज़ी ज़िंदगी को इस कदर खूबसूरत बनाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारी ये जो आरज़ी ज़िंदगी है इसमें हमारे पास हर तरह की आसाइश मुहैया हो ताकि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे, सुकून से गुजरे. यानी कि अगर हमें थोड़ा सा भी वॉक करके कहीं जाना पड़ता है तो हम वो भी ना करें, हमारे पास एक अदद इलेक्ट्रिक कार हो, और अगर हमारे पास एक अदद छोटी गाड़ी है तो माइंडसेट ये कहता है कि थोड़ा सा और मेहनत करते हैं और एक अदद बड़ी गाड़ी ले लेते हैं. सो इंसान की ये जो भूख है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, जो उसका लालच है दुनियावी ज़िंदगी को लेकर और दुनिया की चीज़ों को लेकर. मगर हम इंसान इस कदर भुलक्कड़ हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक हमारी वो ज़िंदगी भी है जहां हमने मुस्तकिल तौर पर रहना है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं. सो हम अपनी आरज़ी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं. क्या हमने कभी गौर व फिक्र की कि किस तरह से हम अपने उस मुस्तकिल ज़िंदगी को भी खूबसूरत बना सकते हैं जहां हमने हमेशा हमेशा रहना है और वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं. लेकिन इंसान इस कदर बिज़ी है, इस कदर स्ट्रगल में लगा हुआ है कि वो गौर ही नहीं करता. सो बेसिकली फ्राइडे का ये जो दिन है, जुमातुल मुबारक, ये तमाम तर मुसलमानों के लिए एक अदद रिमाइंडर है कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और वापस लौट आओ उस मकसद की तरफ, उस मिशन की तरफ जिसके तहत आप में हम सभी इस दुनिया में आए हैं. सो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि बाकी दिनों में तो हम दुनिया को बहुत टाइम देते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को. सो फ्राइडे के डे हमने उस हस्ती को टाइम देना है जिसने हमें पैदा किया, हमें इस दुनिया में भेजा. सो फ्राइडे के पूरे डे में से आप सभी अपना कुछ वक्त मुख्तस करें इबादत के लिए, और फिर कुछ वक्त मुख्तस करें जिसमें आप ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ें और गॉड के साथ आपका ये जो कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो चुका है पूरा वीक अल्लाह को ना याद करने की वजह से, वो भी एक किस्म का दोबारा से बहाल हो. सो जैसा कि लिसनर्स, लास्ट फ्राइडे को आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर ये अहद किया था कि हम आने वाले पूरे हफ्ते में दो अदद अच्छी हैबिट्स को अपनाएंगे और एक अदद बुराई को कम करेंगे. सवाल आपसे मैं पूछती हूँ कि बताइएगा क्या आपने उस पर कितना अमल किया या नहीं. ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये कोई रेस नहीं है जहाँ आपने बस आगे बढ़ने के लिए गलत बोलना है, आप सच भी बता सकते हैं. सो किस तरह से आप हमें बता सकते हैं, 0115710971 इस नंबर के थ्रू. सो वेल लिसनर्स, आज भी आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ एक अदद ऐसा ही अहद, यानी कि आज के दिन भी हम एक नया अहद करेंगे कि आने वाले इस हफ्ते में हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी की काफ़ी हद तक की बुराइयों को कम कर सकते हैं. आई नो कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, ना मैं हूँ, ना आप हैं और ना हम हैं, लेकिन अगर हम मुस्तकिल कोशिश करते रहें तो ज़िंदगी में एक मौका ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ हम काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे और बेहतरी की जानिब रवा दवा होंगे. सो लिसनर्स, लास्ट वीक का हमारा ये अहद था कि हम अपने सोसाइटी को, इर्द गिर्द के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा शख्स मौजूद है, ऐसे लोग जिन्हें वाकई ही हमारी मदद की ज़रूरत हो बट समहाउ वो हमसे ना कहते हों. और हमारा मेन मोटिव यही होगा कि हम किसी न किसी तरह उन्हें वो मदद प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर हो फिज़िकली, किसी भी तरह की मदद जितना हमारे बस में हो सके हम करेंगे.
तो जी बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास की कम्युनिटी को ऑब्जर्व किया है और वाकई ही किसी नीडी इंसान की मदद की है। सो आज का हमारा इस वीक का जो गोल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, पर अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो मेरी जो ये डिस्कशन है ये थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इसे कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टार्ट करें, अदरवाइज ये बात बीच में ही रह जाएगी और हो सकता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो कि कमर्शियल ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें उन्हें समझ ना आए। सो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पर। तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, बंदे रहना है और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना है। हम बस यूं गए और यूं आए।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से खुश आमदीद। जैसे कि लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की दोस्त, आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग। सो दे लिसनर्स, अब जरा बात कर लेते हैं हमारे उन सभी लिसनर्स के जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो अगर आपका भी शुमार है उन ही लोगों में से जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया है, सो आप सभी के लिए ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। सो बताते चलिए कि आप क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वो सभी लिसनर्स जो कि ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त या फिर पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। मैं हमेशा से कहती हूँ ड्राइविंग एक ऐसा टास्क है जिससे आपकी पूरे फोकस की ज़रूरत होती है। सो अगर आप ड्राइव करते करते अपना ध्यान इधर उधर करते हैं या फिर आपके माइंड में बहुत सारी दुनियावी चीज़ें चल रही होती हैं, सो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस सूरत हाल में आपका दिमाग कहीं और होगा और आप काम कुछ और कर रहे होंगे, तो ये काफ़ी हद तक असरअंदाज हो सकता है। सो एहतियात किया करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी मुंसलिक होती है। सो हमारा कोई भी एक गलत कदम या फिर और कह लो कि कोई मिस्टेक किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत बड़े नुकसान का मौजब बन सकती है। सो ज़रा ख्याल रखा करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफ़र खूबसूरत तरीन बन जाए और आपको हमारी खूबसूरत खूबसूरत सी आवाज़ें सुनने को मिलें, तो उसके लिए आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं और वहाँ हमारा साथ दे सकते हैं। सो जे लिसनर्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कमर्शियल ब्रेक से पहले कि किस तरह से हम आज के इस खूबसूरत तरीन दिन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं या फिर क्या ऐसे नेक अमाल कर सकते हैं जिनके थ्रू हमारा जो गॉड के साथ एक कनेक्शन है जो काफ़ी हद तक वीक हो चुका है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो इसी में एक और बात भी मैं आप सभी से शेयर करती चलती हूँ कि जुमे का दिन बेसिकली इस हवाले से भी एसोसिएट किया जाता है कि जुमा के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा आपके अमाल नामा में नेकियों का इजाफा होता चला जाता है। और नॉर्मल डेज़ के हवाले से और जुमा के दिन के हवाले से ये कहा जाता है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जहां आप सच्चे दिल से जो भी दुआ करते हैं, जो भी इल्तजा करते हैं, आपकी वो दुआ ज़रूर सुनी जाती है और कबूलियत का दर्जा इख्तियार करती है। और हमारे बहुत सारे बाज़ उलमा का ये कहना है कि अगर आप इस घड़ी की तलाश में हैं या आप चाहते हैं कि आपको मालूम हो वो ऐसा वक्त जहाँ आपकी हर की गई दुआ कबूल होती है, सो आप उसे नमाज असर से लेकर नमाज मगरब के बीच में ढूँढें। सो आज आपने क्या करना है, आज आपने अपनी रूटीन में से कुछ वक्त साइड पे निकाल लेना है, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ना है। सो बेसिकली हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ हमें इबादत का तरीका सिखाया है बल्कि हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनना भी सिखाया है। उनकी एक बहुत ही मशहूर हदीस का मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। सोचिए, कभी कभी हम समझते हैं कि एक अच्छा मुसलमान सिर्फ वो है जो बहुत ज़्यादा इबादत करता है, लेकिन हमारा रवैया सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रवैया रखते हैं, आप किसी कमज़ोर इंसान को किस तरह से ट्रीट करते हैं या फिर आप किसी की गलती को माफ़ करते हैं या नहीं, ये सब भी हमारे दीन का हिस्सा है और ये सब डिफाइन करता है कि आप कैसे अखलाक के मालिक हैं। सो
कोशिश किया करें कि आप अपने इखलाक को खास तवज्जो दिया करें, क्योंकि ज़िंदगी में आप कोई और अच्छा काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन जिस तरह से आप अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैंने अपनी आसपास ज़िंदगी में ओवरऑल जितना भी मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, उस हवाले से अगर मैं आपसे कुछ शेयर करूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं करते, दूसरों का एहसास नहीं करते, एंड इंस्टेड अब वो बहुत सारी इबादत भी करते हैं, बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर एक तरफ से आप हकूकुल इंसान का ख्याल नहीं रखते, आपकी वजह से आपके आसपास के इंसान किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, या आपकी किसी सख्त बात की वजह से उन्हें दुख या तकलीफ पहुंचा है, और साथ ही साथ आप ढेर सारी इबादत कर रहे हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड हो, तो आपको सबसे पहले अपने आसपास के लोगों का और अपनी आसपास की कम्युनिटी का ख्याल रखना ज़रूरी है। और वैसे भी एक रिवायत में कहा गया है कि अल्लाह हमेशा अपने हकूक माफ़ कर देता है, लेकिन अल्लाह कभी भी किसी दूसरे इंसान के हकूक माफ़ नहीं करता। सो कोशिश किया करें आप सभी भी, आई नो डेली बेसिस पर बहुत सारा काम करना पड़ता है, इतनी हैक्टिक रूटीन होती है कि इंसान रूड और एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन गुस्से में भी कभी भी सब्र का दामन मत छोड़िया करें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करें। ऐसे लोग तो आपके मोहताज हों या फिर आपकी मदद के मुंतज़िर हों, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिससे आपकी वजह से तकलीफ पहुंच रही है और आप बस अपनी इबादत में मशगूल हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। ये तो हो गई हमारी तमाम तर दीनी ज़िंदगी की गुफ्तगू, एंड आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको भी एक अदद रिमाइंडर मिला होगा कि किस तरह से आपने आज का दिन अच्छे तरीके से स्पेंड करना है और अपनी इस दीनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत तरीन बनाना है। अब ज़रा वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक अदद खूबसूरत से प्यारे से सोलफुल कलाम को शामिल करने का, तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह का कलाम सुनना है। फ़िलहाल के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा कलाम मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, सो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसे हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात।

लिसनर्स, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। सो तब तक आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह

0: Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी।
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।

यह कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान ज़ैनब फातिमा। सो दे लिसनर्स, वेलकम टू अवर स्पेशल सेगमेंट द फ्राइडे ग्लो, जहां हर फ्राइडे हम बात करते हैं थोड़ी सी ब्यूटी की, थोड़ी सी सेल्फ केयर की और बहुत सारी पॉजिटिविटी की। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ अपनी सभी डिवाइस के लिए बहुत सारी ऐसी हेल्थ केयर ब्यूटी टिप्स जो कि ना सिर्फ आपको बदल देंगे बल्कि आपको इनके आफ्टर और बिफोर रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। जैसा कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम सभी का फोकस इस चीज़ पर होता है कि किस तरह से हम अपने ऑफिस टास्क कंप्लीट कर लें, डेली बेसिस के चैलेंजेस को कंप्लीट कर लें, काम टाइम पे कर लें और फिर इस तरह की बहुत सारी टेंशनें। लेकिन फ्राइडे आते ही हमारा मेन फोकस इस चीज़ की जाने बढ़ता है कि अब आने वाला है वीकेंड। सो अब हमें ज़रूरत है थोड़ा सा वक्त अपने आप को देने की, अपनी स्किन को देने की, और किस तरह से जो हमारे स्किन पूरा हफ्ता डेली बेसिस पर घर से बाहर जाकर ख़राब हो चुकी है उसे किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर अपने आप को थोड़ा बहुत तब्दील कर सकते हैं। सो जी माई लवली डिवाज, ग्लो सिर्फ मेकअप से नहीं आता। जब हम अपना प्रॉपरली ख्याल रखते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और ख़ुद को थोड़ा सा मी टाइम देते हैं तो वो कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा नज़र आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द फ्राइडे ग्लो होम टिप्स। सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ओटमील जेंटल फेस मास्क। अगर स्किन को जेंटल केयर चाहिए तो आप ग्राउंड ओट्स को थोड़ा सा योगर्ट या फिर पानी के साथ मिक्स करके सॉफ्ट सा पेस्ट बना सकती हैं। फेस पर जेंटली इसे लगाएं, रब ना करें और कुछ मिनट्स के बाद अच्छे से वॉश कर दें। स्किन को ज़ोर से स्क्रब करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप जेंटली भी आराम आराम से मसाज करते हैं सो इट्स बेटर, क्योंकि हमारे फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो आप कभी भी ऐसे स्क्रब जो कि आप अपनी बॉडी पर यूज़ करते हैं या फिर हैंड एंड फीट पे, वो कभी भी आप फेस पर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अदरवाइज फिर ये काफ़ी ज़्यादा हार्श पार्टिकल्स की वजह से आपकी स्किन काफ़ी हद तक डैमेज भी हो सकती है। सो अब आपने इस मास्क को किस तरह से यूज़ करना है, आपने इस मास्क को वीक में 2 to 3 टाइम इस्तेमाल करना है और आप खुद देखेंगे कि इसके आफ्टर एंड बिफोर रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं। और ये वो मास्क है जो कि मैं खुद हमेशा वीकेंड पर इस्तेमाल करती हूँ। और अगर मैं आपको एक प्रो टिप दूँ तो आप फ्राइडे सैटरडे संडे वीक में ये तीनों दिन अगर आप एक एक मरतबा इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा हफ्ता यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं और आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करने लगेगी। सो अब सेकेंड ब्यूटी टिप आप सभी से शेयर करती हूँ। सो दिस टिप इज़ हाइड्रेशन ग्लो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेटिंग स्किन आप बहुत सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की मदद से अचीव कर सकते हैं। नो इट्स नॉट, आप कभी कभी सिंपल पानी भी पीकर अपने स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग बना सकते हैं। सो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खूबसूरत दिखे, फ्रेश दिखे और जानदार दिखे, सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन में 7 to 8 ग्लास पानी पिए। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, सम टाइम बाज़ औक़ात हम लोग काम में इतना बिजी होते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता और हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। सो अगर आप रेगुलरली डेली 7 to 8 ग्लास पानी पीते हैं तो आपको इसके भी आफ्टर और बिफोर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ आप कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी इंटेक ले सकते हैं जो कि स्किन को खूबसूरत बनाने में और हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शेयर करती हूँ जो कि हाइड्रेशन के लिए बेस्ट समझे जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खूबसूरत और ग्लोइंग दिखे सो उसके लिए आपको ऑरेंज का इंटेक ज़्यादा करना है। आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि इस मौसम में तो ऑरेंज अवेलेबल नहीं होता है, सो ये मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि आप लेमन का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं, ऑरेंज का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं।
और क्यूकम्बर का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं अपनी डेली बेसिस की रूटीन में। साथ ही साथ वाटरमेलन भी एक ऐसा फ्रूट है जो कि स्किन को हाइड्रेटिंग रखने में काफ़ी मदद करता है। और साथ ही साथ आप एप्पल ले सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपको डेली एक अदद सेब लाजमी खाना चाहिए। सो ये तो हो गए वो सब फ्रूट्स जो कि स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं उन वेजिटेबल्स के जो कि स्किन को हाइड्रेट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। सो जितने भी हमारी वेजिटेबल्स हैं जो कि ग्रीन बेस्ड वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें हम लौकी ले सकते हैं, शलजम, इसके अलावा बहुत सारी और भी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि करेले, ये सब जो कि फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो भी हाइड्रेशन में बहुत हेल्प करती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी ना पुट करनी पड़े, ना आपको डेली बेसिस पर डिफरेंट तरह के DIY मास्क इस्तेमाल करने पड़े, सो उसके लिए आपको अपनी डाइट को अच्छा करना होगा। आपको अपना वाटर इनटेक, फ्रूट इनटेक और वेजिटेबल इनटेक को इम्प्रूव करना होगा। आइए अब जब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जो ऐसा समझते हैं कि मॉइस्चराइज़र उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है। सो आप सबके लिए भी मेरे पास एक बहुत प्रो किस्म की ट्रिप है। सो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप कभी भी ये मत समझे कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र मत यूज़ करें, आप भी यूज़ कर सकते हैं। बट ख्याल आपको इस चीज़ का रखना है कि आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो आप कोई भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा स्किन को,

सो ये क्या काम करेगा, ये आपकी स्किन को जो नहीं है ऑयली करेगा और जितनी भी ड्राइनेस होगी उसको कम कर देगा। बट इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन तो उस सूरत में आप कोई भी जेल बेस या फिर वाटर बेस मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन की एक्स्ट्रा एक्सेसिव ऑयल को कम कर देगा और स्किन को नरिश करने में मदद देगा।

हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, ब्यूटी टिप्स की बात कर रहे हैं, तो वहीं जहां आपकी स्किन को खूबसूरत प्यारा दिखना चाहिए, वहीं आपकी आंखें भी इसमें शामिल होती हैं। सो किस तरह से हम अपनी आईज को हाइड्रेट कर सकते हैं, डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं और जितने भी आई पैचेस हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें यूज़ करना है क्यूकम्बर। जैसे कि आज फ्राइडे है, सो फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास ये तीनों दिन हैं, आप क्या करें, आप अच्छे से क्यूकम्बर को फ्रीजर में रख कर अच्छी तरह ठंडा कर लें एंड देन उससे अपने फेस पर, अपने आईज पर मसाज करें। इससे एक तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट होगी, साथ ही साथ क्यूकम्बर में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डार्क सर्कल्स को कम करने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। सो जस्ट सिंपली आपने इसे अपने फेस पर मसाज करना है एंड देन इसे अपनी आईज के ऊपर सर्कुलर मोशन में रब कर देना है और बस 10 से 15 मिनट के बाद आप आराम से फेस वॉश कर सकते हैं एंड यू विल सी कि आपको माइनर नहीं बल्कि काफ़ी वाजिया डिफरेंस नज़र आएगा। सो अब ज़रा बात कर लेते हैं फ्राइडे हेयर केयर रूटीन के मुतलिक। सो हेयर को हेल्दी रखना के लिए आप एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग और बहुत टाइट हेयर स्टाइल्स को अवॉइड करें, क्योंकि मोस्टली जब आप बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं, डिफरेंट तरह के न्यू स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ आप डेली बेसिस पर स्ट्रेटनिंग करते हैं या फिर कर्ल, तो उससे भी काफ़ी हद तक बाल डैमेज होते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिस पर हेयर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। सो आपने इन तमाम तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि अदरवाइज आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं और आपके जो नेचुरल बाल होते हैं वो काफ़ी थिन हो जाते हैं। सो बेस्ट हेयर केयर रूटीन के लिए आपको बिल्कुल भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है कि आप सिंपली जड़ी बूटियों से मौजूद एक ऑर्गेनिक रेमेडी का इस्तेमाल करें। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को नेचुरली स्याह बना सकते हैं, थिक बना सकते हैं और घना और लंबा। सो अगर आप चाहते हैं आपके बाल नेचुरली शाइन करें तो इसके लिए आप प्याज का पानी अपने बालों में शॉवर से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एप्पल साइडर विनीगर को अपने किसी भी शैम्पू या जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसके साथ मिक्स करके बालों में लगा सकते हैं। इससे आपके बाल जो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं, स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, वो कम हो जाएंगे। साथ ही साथ सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप वीक में 2-3 टाइम हेयर ऑयलिंग करें। अच्छा, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल, उसके अलावा अनियन ऑयल, लेकिन मैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ और मुझे उसके इवन आफ्टर एंड बिफोर रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो जब कभी ऐसा होता है कि मैं डेली बेसिस पर हेयर स्टाइल करती हूँ या फिर बालों को बहुत सारी हीट देती हूँ, सो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, वीकेंड्स पे मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ और हमेशा सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी आपके बाल फ्रीजी हो जाते हैं उस सबको ये कंट्रोल करता है और बालों को नेचुरली थिक करता है। सो जिस तरह से हमें खुराक की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए, सो ठीक उसी तरह से हमारे बालों को भी खुराक की ज़रूरत होती है और हम क्या करते हैं, हम उसे स्किप कर देते हैं, ऑयलिंग नहीं करते, तो ये एक मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से बाल आपकी रूट से ही डैमेज हो जाते हैं और फिर इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपके बाल लंबे हैं या छोटे, बाल हमेशा नेचुरली हेल्दी होने चाहिए। सो आपने अपनी वीकली रूटीन में 2-3 टाइम्स हेयर ऑयल करना है, साथ ही साथ आपने वीक में 1-2 मरतबा प्याज का पानी अपने बालों में लगाना है और जब भी कभी आप शावर लें तो आपने अपने शैम्पू के साथ एप्पल साइडर विनीगर मिक्स करके अप्लाई करना है।

लिसनर्स, ये तो हो गई हेयर केयर रूटीन। सो सबसे पहले मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह से स्किन को आप हाइड्रेटिंग कर सकते हैं, एंड देन कि किस तरह से आप बिना किसी DIY मास्क को इस्तेमाल किए स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। फिर हमने ज़रा आंखों के मुतालिक बातचीत की, एंड देन बालों से रिलेटेड। सो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एक अदद और ब्यूटी टिप, सो कि बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करने में गलती करते हैं। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या मिस्टेक करते हैं। सो बेसिकली हनी को फेस पर अप्लाई करने का ट्रेंड एक बहुत ही ज़्यादा पुराना और कॉमन है, लेकिन हर स्किन को होममेड मास्क सूट नहीं करते। अगर ट्राई करना है तो आप सबसे पहले कोई भी, अगर आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ब्यूटी इंग्रेडिएंट, सो द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ आपने एक पैच टेस्ट कर लेना है। आप सिंपली अपने हाथ पर लगाकर उसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई ये इंग्रेडिएंट आपको सूट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मोस्टली इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन समटाइम्स आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, सो आप उन विटामिन्स के हार्श पार्टिकल्स को नहीं झेल पाते। सो इसलिए पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। सो ये थी हमारी आज की द फ्राइडे क्लो ब्यूटी टिप्स। मैंने सोचा कि क्यों ना, वीकेंड आने वाला है, सो वीकेंड में आपके पास होता है बहुत सारा टाइम, तो क्यों ना आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर की जाएं जो आप अपने इस वीकेंड में अप्लाई कर सकें, और इस्तेमाल करने के बाद आपने मुझसे लाजमी शेयर करने हैं इसके आफ्टर बिफोर रिजल्ट्स। सो डियर लिसनर्स एंड माय लवली डिवास, कैसा लगा आपको हमारा आज का द फ्राइडे क्लोज सेगमेंट? वेल, इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई ऐसे ब्यूटी टिप, DIY मास्क जो आपको समझ ना आया हो या कंफ्यूजिंग लगा हो, सो सिंपली 01157100971 आप इस नंबर पे जाके हमसे पूछ सकते हैं। वेल, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी उस क्यूरी को दूर किया जाए और आपको अच्छी सजेशंस दी जाएँ।

सो दिल इस प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद खूबसूरत से सोलफुल से कलाम को शामिल करने का। सो आप भी मुझे बता सकते हैं कि किस तरह के कलाम आप सुनना चाहते हैं या कौन सा कलाम जो मैं अपने इस प्रोग्राम में शामिल करूं। सो फिलहाल के लिए ये बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम हमारे सामने मौजूद है, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर स्टार्ट करेंगे हमारा अगला सेगमेंट।

राइट लिसनर्स, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो जी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, सो स्टे ट्यून विद अस।

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

राइट से वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम तरह लिसनर्स को खुश आमदीद इन दीवा डायलो। जैसे कि लिसनर्स अब आपको मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा से भी ज़्यादा, सो अब बस चंद ही लम्हात रह चुके हैं आपके और मेरे साथ में, और अब वक्त आ चुका है प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का। सो हमेशा की तरह आज भी द स्पाइस किचन में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि वो बहुत जल्दी बन भी जाती है। सो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करने पड़ेंगे और आप झटपट से इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। सो जैसा कि आज फ्राइडे है तो क्यों ना नई एक ऐसी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी और जूसी सी रेसिपी बनाई जाए जो आपने पहले ट्राई नहीं की। सो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन चीज रोल्स, परफेक्ट फॉर इवनिंग टी, फैमिली गेट टुगेदर एंड वीकेंड ट्रीट्स। सो दी लिसनर्स एंड माय लवली डिवास, जल्दी से अपनी नोटबुक, डायरी या फिर कॉपी रेडी कर लीजिए क्योंकि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो अगर आप कोई भी काम कर रही हैं सो एक से दो मिनट के लिए उसे कर दीजिए स्किप, क्योंकि अदरवाइज हो सकता है आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो जाए। सो जी इस मज़ेदार सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट लिस्ट कुछ यूँ है। तो सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन 500 ग्राम्स, जिसे आपने अच्छे से वॉश करके बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। साथ ही साथ हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पूंस, प्याज एक मीडियम फाइन चॉप्ड, लहसुन 1 टेबल स्पून चॉप्ड या फिर पेस्ट, एंड अगेन अदरक भी 1 टेबल स्पून अच्छे से पेस्ट बना हुआ। इस रेसिपी में शामिल होंगी शिमला मिर्च एक मीडियम साइज की, गाजर एक स्मॉल, बंद गोभी एक अदद, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका और विनेगर 1 टीस्पून। हरा धनिया 2 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद और मोज़रेला चीज़। अच्छा ये वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो चिकन फिलिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब देख लेते हैं कि रोल्स बनाने के लिए हमें क्या क्या दरकार है। सो उसके लिए स्प्रिंग रोल शीट 10 से 12 अदद, मैदा 2 टेबल स्पून, पानी 3 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल डीप फ्राइंग के लिए। तो लिसनर्स ये थी हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट, आई होप आप सभी ने नोट कर ली होगी, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपसे हो गया है कोई भी इंग्रेडिएंट मिस तो घबराने की कोई बात नहीं, आप सिंपली 01157100971 इस नंबर पर जाके पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी उस क्यूरी को दूर किया जाए। सो ये तो थे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप सभी को दर्ज करवा दिए हैं। अब आ जाइए किचन में और चलकर देखते हैं क्या हमारे पास ये सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं, और अगर इनमें से कोई एक द इंग्रेडिएंट मिस है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं, सिंपली आप किसी भी सुपरमार्केट से परचेज कर सकते हैं जो आपके घर के करीब हो। सो अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके फुल प्रोसीजर की जानिब। सो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें चॉप प्याज शामिल करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेंगे। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि रॉ स्मेल खत्म हो जाए। इसके बाद बोनलेस चिकन डालकर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे चिकन का रंग चेंज होने तक, अच्छी तरह से इसे सौटे कर लेंगे। अब आ रही आती है चॉप्ड शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, इन तमाम तरह की वेजीज को ऐड करने की। सो तमाम तरह सब्जियों को ज्यादा सॉफ्ट हमने बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा सा क्रंच बाकी रहे इतनी देर तक हमने पकाना है।
सो अब हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और विनेगर। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल कर देंगे। सो अब हम अपनी फिलिंग को चूल्हे से उतार कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब बारी आती है मैदा पेस्ट बनाने की, ठीक है। सो अब तक हमने चिकन फिलिंग रेडी कर ली है, जिसकी मदद से हम ये मज़ेदार से रोल बनाएंगे। लेकिन अब हम एक छोटे बाउल में मैदा और पानी डालकर इसे स्मूथ थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट रोल्स को सील करने के लिए यूज होगा। अब हम स्प्रिंग रोल शीट को फ्लैट सरफेस पर रखेंगे। इसके एक साइड पर 1 से 2 टेबलस्पून चिकन फिलिंग ऐड कर देंगे। ऊपर से ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। शीट को किनारे अंदर की तरफ फोल्ड करें और रोल को टाइट रैप करके रख लेंगे और उसके ऊपर हमने जो मैदा का पेस्ट बनाया था उसे लगा देंगे। इस तरह एक एक करके हम तमाम तर रोल्स को तैयार कर लेंगे। सो इस तरह से हमारे तमाम तर रोल्स रेडी हो गए। अब 10 से 15 मिनट के वक्फे के बाद एक कड़ाही में हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रोल बाहर से जल जाएंगे और अंदर से प्रॉपरली नहीं पकेंगे। रोल को पैचेस में ऑयल में शामिल करेंगे और हल्का सुनहरा ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। फ्राइड रोल्स को टिश्यू पेपर पर निकाल के रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्जर्व हो जाए। और टडा, हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन रोल्स हो गए तैयार। अब आप इसे लंच में भी खा सकते हैं या चाहें तो फैमिली गेट टुगेदर या फिर इवनिंग टी में भी। अच्छा, इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी क्विक डिपिंग सॉस की रेसिपी, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो कि इन चिकन रोल्स को मज़ीद कॉम्प्लीमेंट करेगी। सो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आप एक बाउल में ये तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लें। अच्छा, क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं? मायोनीज 1.5 कप, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 चुटकी। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपकी क्रीमी स्पाइसी डिपिंग सॉस हो गई तैयार। अब आपने करना ये है कि क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल्स को गर्मा गर्म डिपिंग सॉस, केचप या फिर मिंट चटनी के साथ सर्व करें। आप इन रोल्स को डीप फ्राई करने के बजाय एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इसके लिए रोल्स पर हल्का सा ऑयल ब्रश करके 180 डिग्री सेल्सियस पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक आपने इन्हें कुक करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो फ्राई चीज़ें नहीं खाते, सो आप इसे एयर फ्राई कर ले। इस सूरत में ये कम ऑयली होंगे बट टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं होगा। दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलिशियस बनेंगे। तो डियर लिसनर्स, ये थी हमारी आज की स्पेशल स्पाइस किचन फ्राइडे रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे भी जैसे कि अभी वीकेंड्स आ रहे हैं तो वीकेंड्स पे अक्सर औकात ऐसा होता है कि फैमिली में कोई बड़ी ना सही लेकिन कोई छोटी ही सही एक अधिक गेट टुगेदर तो प्लान कर ही ली जाती है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वीकेंड्स पे अचानक से कोई गेस्ट घर पर आ जाते हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि चाय के साथ क्या सर्व किया जाए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एंड आई बेट यू कि आपके तमाम तरह गेस्ट भी कहेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हैं, डिलिशियस हैं, प्लस इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं जो हर घर पर मौजूद होते हैं, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लाजमी बनाइएगा और इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है जब आप अपने लव्ड वंस के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए कुछ भी अच्छा सा मज़ेदार सा कुक करते हैं। इससे ही हम एक दूसरे को अपनाइत का एहसास दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुकिंग इज़ लाइक अ लव लैंग्वेज और इंसान तभी अच्छा खाना बनाता है जब वो अपने किसी भी करीबी इंसान के लिए बना रहा हो।
और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि कुकिंग इज़ लाइक अ आर्ट, आप जितना अच्छा जितने आराम आराम से इसे बनाते हैं उतना ही अच्छा और मज़ेदार खाना बनता है। वेल, ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि आपका इस हवाले से क्या कहना है। और इस रेसिपी को ना सिर्फ हमारी फीमेल्स बल्कि मेल हजरात भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं। सो आप भी ट्राई करिएगा। वैसे भी आजकल जैसे कि 2026 चल रहा है, सो आई थिंक सो कि अब वो कंसेप्शन ख़त्म हो जाना चाहिए जहां लोग समझते हैं कि कुकिंग या फिर घर के काम सिर्फ और सिर्फ औरतें करती हैं। आजकल का तो इतना जदीद दौर है कि औरतों के साथ साथ मर्द को भी हर तरह का काम, हर तरह का टास्क आना चाहिए। चलो लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी से रिपीट करती चलती हूँ, जैसा कि आज फ्राइडे है, सो फ्राइडे के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपने कीप इन माइंड रखनी है, वो ये हैं कि फ्राइडे इज़ नॉट लाइक अ ऑर्डिनरी डे, इट्स अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ मुस्लिम्स, स्पेशली दोज पीपल्स जो कि इस दिन का वेट करते हैं थ्रू आउट द होल वीक, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फ्राइडे को इबादत करने का सवाब आम दिनों से ज़्यादा मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रू है। इस दिन का मज़ीद फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने ज़िंदगी को अच्छे कामों में सर्व करें, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी तो यहीं कहीं रह जाएगी। असल तो कामयाबी सिर्फ उसे इंसान को मिलेगी जो कि अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी के साथ साथ अपनी आखिरत की ज़िंदगी को लेकर चलता है।

इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि दुनिया में तो आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं जस्ट टू अचीव फ्यू थिंग्स, तो उस आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी आप इतनी ही मेहनत किया करें जो कि परमानेंट है, हमेशा रहने वाली है, और आपने एक ना एक दिन वहाँ लौट कर जाना है। इसके अलावा आज जितने भी हमने अहद किए हैं आपने उन्हें भी याद रखना है और इस आने वाले पूरे वीक में करना है, साथ ही साथ मुझसे शेयर करिएगा। साथ ही साथ लिसनर्स, जैसा कि है आज फ्राइडे, सो अब आपसे मुलाकात होगी वीकेंड के बाद यानी कि मंडे को, सो सुनेंगे आपकी तमाम तरह की गॉसिप्स कि आपने इस वीकेंड में क्या किया, साथ ही साथ मैं भी आपसे शेयर करूंगी कि मेरे वीकेंड्स को लेकर क्या प्लान है। वेल, फिलहाल के लिए तो मेरा कोई ऐसा खास प्लान नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना सुपरमार्केट का चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि फाइनली वीकेंड पूरे हफ्ते के बाद आता है, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है आपको मंथली बेसिस पर, तो मैं वही सोच रही थी कि अपने ज़रूरत का कुछ सामान ले लेती हूँ और बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। सो आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान हैं इस वीकेंड को लेकर, डू लेट मी नो। एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ आप सभी से, 01157100971 है मेरा और आपका रابطے का नंबर। ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल का हाल हमसे, और साथ ही साथ अब वो सभी बातें भी हमसे शेयर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं किसी से भी शेयर करना, या आप चाहते हैं कि कोई आपको सुने, आपको समझे और आपको ऑनेस्टली एडवाइस दे। इसके अलावा www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, सो इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ना सिर्फ ट्यून कर सकते हैं बल्कि रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हर तरह की मालूमात यहां से हासिल कर सकते हैं। सो जी, हमारे आने वाले तमाम तरह नए इवेंट्स की अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर मिलेगी। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला। सो ये वो जरिया है जो आपको हमसे और हमें आपसे जुड़े रखता है। मजीद आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM। सिंपली आपको एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर पर जाना होगा, वहां जाके सर्च बार में आपने रेडियो फजा 97.1 FM टाइप करना है और विद इन अ फ्यू सेकंड जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉप अप करेगी वही है हमारी एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसे इंस्टॉल, ताकि इसी तरह से आपका और हमारा ये जो साथ बरकरार है इसी तरह से बरकरार रहे और गपशप का सिलसिला चलता रहे। तो लिसनर्स, इसी के साथ ही आज के इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है और उम्मीद तो यही है कि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, मीनिंगफुल गुजरे और अच्छी यादों के साथ। सो प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है लेकिन आपका दिन, आपका ये खूबसूरत सा लम्हा अभी बाकी है, तो कोशिश करिएगा कि आप अपने इस दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाएं अच्छी यादों के साथ, अच्छे कामों के साथ और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। सो लिसनर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ उन सभी लोगों का जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक है। बाज़ोकात हमें एहसास नहीं होता लेकिन हमारी कोई भी रूड और एग्रेसिव बिहेवियर किसी दूसरे इंसान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है, लेकिन हम बस क्या करते हैं, हम अपने कामों में इस कदर मगन होते हैं कि बस एहसास ही नहीं कर पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अक्सर औकात हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे होते हैं और हमारे साथ कोई ओल्ड वुमेन मौजूद होती हैं जिन्हें सीट की ज़रूरत होती है, बट हम क्या करते हैं कि हम अपनी सीट की फ़िक्र कर रहे होते हैं। सो ऐसे लोगों का ख्याल रखा करें जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी अखलाकियात को बेहतर बनाने में, जिंदगी संवारने में। सो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है वीकेंड मंडे को एक नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ। सो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते ये प्यारा सा कलाम आप सभी के लिए मैं प्ले करती चलती हूँ, सो आप इस कलाम को सुनिए और मुझे अलविदा करिए।

0: Attention!
1: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO licence for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

सोल, उसी के साथ साथ दिन बड़ा ही खूबसूरत सा जुम्मे का दिन है और उम्मीद करेंगे कि आपका दिन अच्छे से गुजरेगा और दुआ करेंगे सबके लिए, ना सिर्फ अपने लिए। कहते हैं कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो सबसे पहले आपके हक में कबूल होती है। सो इसका मतलब ये नहीं कि किसी लालच में किसी के और के लिए दुआ करें, बट खुशी से करें।

क्योंकि जब आप किसी के लिए दिल से दुआ करते हैं ना, तो आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। और वो जो रब की ज़ात है ना, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, वो तो उनको भी देता है जो उससे मांगते नहीं हैं। हाँ, मैं इतना कहती हूँ कि मुश्किल वक्त में किसी और के पास जाने की बजाय आप रब के पास जाएँ। एक सजदे की देर और उसने आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर देनी है, क्योंकि वो कहता है कि एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को उसके लिए जो मेरी चाहत है, तो वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुहालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। अपने आप को रब के फैसले पर रहना, राज़ी करना सीखें। और जब आप उसको राज़ी कर लेते हैं, उसके फैसलों पर राज़ी हो जाते हैं, तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऊपर से प्यार मिले, रब की ज़ात आपसे प्यार करे, तो आप प्यार बांटना शुरू कर दें। अच्छा, हमारे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में रब को याद करते हैं और खुशी में नहीं याद करते। और मैं कहती हूँ कि जब आप अपनी मुश्किल को, अपनी परेशानी को सबसे पहले रब के साथ बांटते हैं, इसी तरह अपनी खुशी को भी सबसे पहले उसी खूबसूरत ज़ात के साथ बांटें जिसने आपको ये खुशी नसीब हुई है, जिसने आपको इस मुकाम पर, जो आपको लेकर आया, जो इस जगह पर लेकर आया, ताकि आप खुशी को इन्जॉय कर सकें। क्योंकि एक वही दर है जहाँ से बार बार मांगते हुए शर्म नहीं आती, जहाँ से मांगते हुए शर्मिंदा नहीं किया जाता। और दुनिया वालों से तो मांगने का मतलब भी नहीं है, दूसरे खुद बता दी कि दुनिया फानी है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। अगर कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें, या फिर कोई कलाम प्रोग्राम में प्ले करवाना चाहें, तो मुझे लाजमी बताइएगा। जो लोग मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, जस्मीन के खवातीन, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुने। कुकिंग के हवाले से कोई रेसिपी मुझसे पूछना चाहें, तो मुझे लाजमी बताइएगा। दिन है जुमे का, और जुमे के दिन जो है वो मोस्टली जो है वो मेहमान आते जाते रहते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर खाना वगैरह जो है ना वो थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ता है, कुकिंग भी अच्छे से करनी पड़ती है। अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं, कोई अच्छी सी रेसिपी मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो मुझे लाजमी बताइएगा। आई थिंक मैंने लास्ट फ्राइडे को प्रोग्राम में रेसिपी शामिल की थी, और पता नहीं क्यों की थी, मेरा दिल कर रहा था कि प्रोग्राम में एक छोटी सी रेसिपी भी शामिल करूं। ज़रूर करूंगी अगर आप मुझसे फरमाइश करेंगे। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। कोई कलाम प्ले करवाना चाहें, तो मुझे लाजमी बताइएगा, या फिर मेरी पसंद का कोई कलाम सुनना चाहें, तो मैं वो भी आपके लिए प्ले कर दूंगी। अभी मेरे पर्सनल नंबर मुझे फरमाइश आई थी कि ये वाला ट्रैक सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करना है, अभी ट्रैक शामिल नहीं हो सकता। हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी रहेगी, तब आप जो है वो प्रोग्राम में मैसेज कर अपनी फरमाइश को पूरा करवा लीजिए। अगर नंबर मैं आपको अगेन नोट करवा देती हूँ, 01157100971। सवाल, आइए चलते हैं एक खूबसूरत से कलाम की जानिब, फिर इसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फजल इन 7.1 FM एंड ऐप ट्यून करके रखिएगा, और साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

न मिलकुना तू लिखे न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने, मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती समातों को रेडियो फिजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर ग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलराज की सवाल। उसी के साथ साथ अभी एक छोटी सी फरमाइश में बस मौजूद है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन उससे पहले इतना बता देते हैं कि समय हुआ जाता है इस टाइम पे मेरे आपके दरमियान एक कमर्शियल ब्रेक का भी। सवाल आइए इस फरमाइश को शामिल करते हैं, मैं भी शायद इसके उस पर मेरे आपके दरमियान एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हायल हो जाए। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। स्टेडियम फजन 7.1 एफएम एंड ऐप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।

0: जबरदस्त, मैं उनसे रابطہ करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

सो बात हम क्या कर रहे थे, बात हम ये कर रहे थे कि आगे कोई आप पूरी तरह से ये आपके साथ चल रहा है, आप यकीन करता है तो आप उसका यकीन कभी मत तोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ की माफ़ी दी जा सकती है, सिर्फ उस चीज़ की माफ़ी नहीं होती जब आप किसी का यकीन तोड़ते हैं। तो वो कोई इंसान पूरे दिल से आपके साथ मुखलिस होता है, आप उस इंसान को तोड़ देते हैं तो वो मुकाम, वो जगह फिर इंसान दोबारा कभी भी उस पर्सन की लाइफ में या ज़िंदगी में नहीं बना सकता। बट लाइफ और ज़िंदगी तो एक ही बात है, कोई नहीं, कोशिश किया करें कि आपकी वजह से कभी भी किसी की आंखों में आंसू ना आए। छोटी सी ज़िंदगी है और कोई पता नहीं है, आई डोंट नो कि अगला सांस आना भी है या नहीं आना। अभी जो है ना वो तकरीबन मेरे आपके दरमियान वक्त जो हुआ जाता है वो एक कलाम क्या, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि जिन नए लोगों ने आज अभी फर्स्ट नाइट 7.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीक़ाकार मैं आपको अगेन बता देती हूँ, 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। कल वीकेंड है और वीकेंड पे आपने कहाँ जाना है, कहाँ आना है या किसने आना है तो मुझे लाजमी बताइएगा। या हाँ, कल वीकेंड और वीकेंड पे अगर मज़े मज़े के खाने आपने बनाने हैं तो मुझे जल्दी से बता दें, अगर कोई रेसिपी मैं आपको बता सकूं जो आप मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं, या फिर अपनी कोई रेसिपी प्रोग्राम में शामिल करवा दें। अभी बहुत से मैसेज ऐसे होते हैं जिनको मैं नहीं रीड कर पाती, सो उसके लिए सो सॉरी, लेकिन मेरी कोशिश ही रहती है कि जो जो मैसेज मेरे से मिस हो जाते हैं मैं उनको भी रीड किया करूँ। अभी मेरी प्रॉपरली टोटली जो है ना आवाज़ एक किस्म की बैठ रही है, गला मेरा बहुत दर्द कर रहा है। अभी मेरे ख्याल में एक कलाम की जानी बढ़ते, मुझे कहा जाता है कि आप अपने प्रोग्राम में आबदा परवीन की आवाज़ क्यों ज़्यादा शामिल करती हैं, बस मैं शामिल नहीं करती, मेरे पास फरमाइश आती है उनके कलाम की।

0: लेकिन अभी जो मेरे पास फरमाइश आई है ना, वो आई है सना मारवी की आवाज़ में, और मैंने ये कलाम आई थिंक सो कि मैंने पिछले फ्राइडे को भी प्ले किया था, और यही फरमाइश आई थी और इन्होंने ही की थी। सो वेल, आइए सुनते हैं इस कलाम को, इस कलाम के उस पर एक गीत से मुलाकात। सना मारवी जो है ना, इनको सुनने का एक अलग ही मजा, और इनकी आवाज में कितना इतना सुकून है। सवाल आइए सुनते हैं इस कलाम को।
1: बुल्ले शालों की यार हंस के मना,
0: मिलते हैं इस कलाम के उस पर। ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 एफएम को एंड ऐप को। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंचबॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरफराज की। लीजिए वल भाग दौड़ के हम दोबारा से किस तरफ आन पहुँचे आपदा परवीन की आवाज़ की जानिब। आपदा परवीन के कलाम की फरमाइश में बस मौजूद थी, तो मैं सोचा क्यों ना इनको भी शामिल कर दिया जाए। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, ये कलाम का नाम है, मैं आपको नहीं बोल रही। संजो मजाक जारी रहेगा प्रोग्राम में, आपका मेरा साथ रहेगा 2 बजे तक। अभी जो है वो अगले सेगमेंट में स्टार्ट होने वाला, इनके फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में रखा होता है म्यूजिक का, जिसमें आपके पसंद के फरमाइशों को पूरा किया जाता है। लेकिन अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम इस कलाम को शामिल करते हैं, इसके इस बारे की आपसे मुलाकात में भी शायद एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक भी आ जाए इसके दरमियान। वेल ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 एफएम को एंड टैप को, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: ओखाना काय के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

मिल गया मुझे वो छोटा सा का नाम, नबील शौकत की आवाज़ और सना मालवी की आवाज़। उम्मीद करूँगी कि आपको ये कलाम पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कि मुझसे बोला नहीं जा रहा सही से, देख नहीं सकते बल्कि आप सुन सकते हैं, और मैं भी आपको सुनना चाहती हूँ। आप मुझे कॉल कीजिए, प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू शामिल हो जाइए और बताइए क्या आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। वेल, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास रहेगा। इस कलाम के उस पर आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 एफएम एंड ऐप। मिलते हैं इस खूबसूरत कलाम के उस पर।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आप सुन रहे हैं सलूराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक।
1: तेरा महरम राज
0: अभी तकरीबन जो है ना वो मेरे आपके दरमियान जो वक्त रह चुका है काफी कम है। सुबह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आज का साथ अच्छा लगा होगा और आज की बातें भी पसंद आई होंगी और साथ ही में जो कलाम किए गए थे वो भी आपको पसंद आए होंगे। और जिनकी फरमाइश मैं पूरी नहीं कर सकी सो उनसे माजरत, आप जो है हमारी बाकी ट्रांसमिशन हमारी आपके साथ जारी रहेगी, आप बाकी से फरमाइश कर लीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सा आदमी इस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है। सो आप हमारी गूगल पे जाके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, तमाम तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आर्टिस्ट भी आपकी पसंद के होंगे और डेफिनेटली होंगे। जब आप दिल से किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं तो फिर वो चीज़ आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है। बेहद शुक्रिया आप तमाम सवातों का, इतना प्यार देने का, साथ देने का, साथ होने का एहसास दिलाने का। अभी तकरीबन वक्त जो है वो कम है और अभी जो है इस खूबसूरती आवाज़ को आपके दरमियान शामिल किया है, चंद मिनट बाद आपसे आके चाहेंगे इजाजत। अभी तक के लिए एक बार फिर से बोलूंगी ट्यून करके रखिएगा फज़ल 97.1 एफएम को एंड ऐप को, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी

कोई और लिखा, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है, बिखरता है वही।

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा मुबारक मेरे बहुत ही प्यारे सामईन, आप जहाँ के भी हैं, जिस कैफियत में भी हैं, मेरी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से जुमा मुबारक। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम और मैं हूँ आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा हैदर। आज जुमा मुबारक का खूबसूरत दिन है। नॉटिंघम में यकीनन बहुत से सामईन नमाज जुमा अदा कर चुके होंगे, कुछ अपने कामों की तरफ वापस जा रहे होंगे, कुछ घरों में आराम कर रहे होंगे, कुछ शायद अपनी दुकान या ऑफिस में बैठे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी अपने मामूलात में मसरूफ हों। लेकिन जुमा की खूबसूरती ये है कि ये हमें दुनिया की मसरूफियात के दरमियान चंद लम्हों के लिए रुकने का मौका देता है, ज़रा रुक कर सोचने का मौका कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम सारा दिन किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं और सबसे बढ़ करके ये हमारा अपने रब के साथ ताल्लुक कैसा है। जुमा सिर्फ एक दिन नहीं, ये याद दहानी है, एक याद दहानी कि जिंदगी सिर्फ नौकरी कारोबार पैसा घर गाड़ी मोबाइल सोशल मीडिया और मसरूफियात का नाम नहीं। जिंदगी का एक मकसद भी है और वो मकसद है अपने रब को पहचानना, उसकी इबादत करना, अच्छा इंसान बनना, लोगों के हकूक अदा करना और आखरत की तैयारी करना। तो आइए आज के इन खूबसूरत लम्हात को थोड़ा सा बदलते हैं। आज की गुफ्तगू में शोर कम होगा, मौसीकी कम होगी और बात ज़्यादा होगी, बात होगी दिल की, बात होगी अल्लाह की, बात होगी हमारी ज़िंदगी की और बात होगी उस रास्ते की, इस पर चल कर इंसान दुनिया में भी सुकून हासिल करता है और आखिरत में भी कामयाबी की उम्मीद रखता है। तो जहाँ भी है वहाँ ज़रा सुकून से बैठ जाइए और अपने दिल से सिर्फ एक सवाल कीजिए, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी जुम्मा हो तो क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए तैयार हूँ। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी एक सवाल पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। आप सोचते रहिए, इस दौरान हम आपके लिए खूबसूरत सा कलाम पेश करते हैं

मौला न मैं लिखूं ना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जब।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
3: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
3: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय,

क्या आपके मूड को फ्रेश करने के लिए खूबसूरत सा सॉन्ग शामिल करते हैं, सुनिएगा और सर दुनिएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड टैप, क्योंकि फजा 97.1 FM एंड टैप आपका अपना रेडियो है जहां आवाजें महसूस की जाती हैं।

0: करूं मैं।
1: कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और कुछ खूबसूरत यादें देते हैं और फिर वक्त उन्हें हमसे दूर कर देता है, मगर जिंदगी रुकती नहीं, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर आज आपके दिल में कोई भी है ऐसा शख्स जिसकी याद आपको बार बार आती है, उसे भूलने की कोशिश ना करें, बस उसके लिए दुआ कर दें। कह दें, अल्लाह अगर मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे, और अगर मेरे हक में बेहतर नहीं तो मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मेरे लिए उससे बेहतर रास्ता खोल दो। यकीन रखिए, कुछ दर्द वक्त से नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने से कम होते हैं। और फिर समीन, आज के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ रहने वाले तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, जो इस वक्त अपने काम से वापस जा रहे हैं, जो सफर में हैं, जो अपने घर में बैठकर रेडियो सुन रहे हैं, जो अपने दोस्तों या अहले खाना के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। आपकी मोहब्बत, आपके पैगाम और आपकी फरमाइशें ही हमारे प्रोग्राम की असल खूबसूरती हैं। समीन, कभी कभी हम अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते, हम मुस्कुराते रहते हैं लेकिन समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, मगर हमारे अंदर एक पूरी दुनिया आबाद होती है। अगर आप भी इस वक्त किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, किसी रिश्ते के टूटने का दुख है, या जिंदगी में कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रात कितनी तवील क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है, और जिंदगी में भी मुश्किलात के बाद आसानियां जरूर आती हैं, इसलिए उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। यहाँ शामिल करते हैं खूबसूरत सा गाना, सुनिएगा और सर दुनिएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: Better. The radio station for people who love music.
1: But 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

आज हम तीन टॉपिक हैं, इन पर बात करेंगे। एक है एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले एक जो है वो बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है, उसको प्ले करते चलें।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: To stay contact 07440016816 address 35 Lenton Boulevard, Lenton, Nottingham NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोएट्री, न्यूज एंड हेल्थ, ऑल अंडर वन रूफ। आवर रेडियो स्टेशन सरपासिंग ऑल बाउंड्रीज एंड कीपिंग यू कनेक्टेड। इट्स रेडियो फजा 90.4।

ओके जी, वेलकम बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं चन्नी मुनसी कमर्शियल ब्रेक से। अभी हमारा टॉपिक था, जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, कि एजुकेशन, स्किल और महारत, और जिसको हम तजर्बा बोलते हैं, इन तीनों का कम्बिनेशन ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, और जो है डेली बेसिस पे हमें इन तीनों की किस तरह ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, और मेन जो है वो आप लोग अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस एक डिग्री के कागज़ की एक ज़माना था जब डिग्री के कागज़ को एक कामयाबी की गारंटी समझा जाता था, मगर आज भी ऐसा समझा जाता है, लेकिन जो किताबी इल्म को हम इसकी कामयाबी की ज़मानत समझा करते थे, वो वक़्त बदल गया है। और बहुत सारे लोग अभी जो है वो कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि एक्सपीरियंस लिया जाए, एजुकेशन ली जाए, या कोई स्किल सीखा जाए। मेरा मानना यह है कि तालीम आपको जो है वो सिखाती है पर कमाना नहीं सिखाती कि आपने कमाना कैसे है। आप कहते हैं कि आपकी डिग्री ने आपको आपकी पहली जॉब किस तरह दिलवाई और कितना वो आपको हेल्पफुल रही, और जो आपका फर्स्ट जो इंटरव्यू हुए होंगे उनमें आपसे जो है तजर्बे की भी मांग की होगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शो करें। तो एक्सपीरियंस तो कहीं से मिलता नहीं है, तो वो कैसे, मतलब डिग्री के साथ एक्सपीरियंस को कैसे लिया जाए। तो आज हमारा मेन जो डिबेट होगी वो इसी पे होगी, और साथ साथ में जो है एंटरटेनमेंट भी चलती रहेगी। गाड़ियों के शीशे थोड़े से नीचे करें और ठंडी हवा के साथ मेरी बात सुनें। आजकल दुनिया शिफ्ट हो रही है स्किल्स की तरफ, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और आज बड़ी बड़ी कंपनियां डिग्री नहीं देखती। क्या ये सच है? आप हमारे साथ अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करते चलेंगे। तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारा लाइव कॉल का नंबर है 0115710971। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे नए लोगों ने जो ज्वाइन किया हमको। आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, और अपना जो मैसेज है वो भी हमें जो है शेयर कर सकते हैं, और अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस अभी चल रहा है अगर आप शेयर करना चाहें तो हम बड़े आपके शुक्रगुजार होंगे कि आप अपना जो जॉब एक्सपीरियंस या ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करते चलें। क्योंकि अभी पूरी दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन एक कह रहे हैं कि जो देखने में आ रहा है कि आगे एक डिज़ास्टर आ रहा है, वो स्किल शॉर्टेज का जो है वो डिज़ास्टर आ रहा है, कि जो टीन एजर्स हैं और जो नए आने वाले लोग हैं जो 20 से बिलो हैं जिनकी एज, तो वो स्किल और एजुकेशन को तवज्जो नहीं दे पा रहे, क्योंकि सोशल मीडिया और इस तरह की जो गैजेट्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं। तो इस सिनेरियो में हम जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो 30-40 के बिटवीन है, जो उनको चाहिए कि वो अपना एक्सपीरियंस, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा मीडियम हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन को जिन्होंने आगे आके आपको रिप्लेस करना है तो वो उनको हेल्पफुल हो सके। बताएं कि ऐसा एक मीडियम होना चाहिए ना जिससे एक कंट्री है वो भी सरवाइव करे, और आने वाले लोग हैं तो उनको भी एक अच्छा एक मशले राह मिले। और जब कभी आपको किसी किस्म की रिपेयरिंग या कोई भी लाइफ में कोई काम करवाना है, कंस्ट्रक्शन है, कोई भी फील्ड है, तो उसमें स्किल्ड लोगों की कमी ना हो, तो जब काम कराना हो तो आपके पास ऑप्शंस हों। तो अभी जो देखने में आ रहा है कि जब आप कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं या अच्छा कारीगर किसी काम का ढूंढते हैं, तो वो ढूंढने से दिन को जो है लाइट लेके भी घूमे तो नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि स्किल शॉर्टेज आ रही है हमारी ओवरऑल मार्केट में। अभी
हमारे बड़े प्यारे से एक लिसनर है, उन्होंने एक सॉन्ग सुनने की हमारे साथ जो है ना रिक्वेस्ट की है, तो वो उस सॉन्ग को भी ऐड करते चलेंगे। और अगर आपका दिल है कि अपने मर्जी का कोई गाना प्ले करवाएं हमारे लाइव शो में, तो वो भी हो सकता है। हम आपके लिए इधर जो है ना वो 2 घंटे का शो करते हैं,

जो पूरी दुनिया में स्पेशली पेरेंट्स हैं तो वो बगैर जानते हुए सबसे ज़्यादा बच्चों की एजुकेशन पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जब वो बच्चा जवान हो जाता है और अपनी सम टाइम ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेता है तो जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? अगर ऐसा फील होता है तो आप हमारे साथ अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करें, हम उसको अपने जो दूसरे लिसनर्स हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे और इसी तरह जो है एक मुआशरा तश्कील पाता है और जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करने से एक जो है ना प्रॉस्पेरिटी जो है वो प्रिवेल होती है।

अभी हमें रिक्वेस्ट हुई थी एम्पलीफायर गाना इमरान खान का, तो उसको हम अभी प्ले करेंगे अपने इस शो में। तो अगर आप भी किसी को कोई सॉन्ग, कोई बात, कोई डेडिकेट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए हाजिर हैं।

ओके जी, वेलकम बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं। एक बहुत ही प्यारा जो सॉन्ग हमने प्ले किया था, इट वाज आइकॉनिक सॉन्ग बाय इमरान खान। अभी हमें जो है एक मैसेज रिसीव हुआ है, वो कामरान साहब हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं कि मेरी जो डिग्री है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर है, लेकिन आज वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में टॉप वेब डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये है एक स्किल की ताकत है। पहला, सम टाइम बहुत सारे लोग वो डिग्री की और किस्म की करते हैं और लाइफ में उनको काम कोई और करना पड़ता है और वो जो है ना सम टाइम कन्फ्यूज रहते हैं। और क्या होता है कि वो मेंटली और दिली तौर पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो पा रहा कि आपने डिग्री और एजुकेशन है वो किसी और फील्ड में ली है और अभी जॉब कहीं और पे किसी और फील्ड में कर रहे हैं? तो इस तरह बंदे को मेरे मुताबिक जो है वो सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। जैसा कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इसमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, और अभी जो इन दिनों मेरी जॉब चल रही है वो एक स्पेयर पार्ट की शॉप है, तो उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, और साथ में एक रैप शॉप है तो उसको लेके चल रहा हूँ। लेकिन जो मेरा बिल्ट इन फंक्शन है या जिसे मुझे ऊपर वाले ने डिज़ाइन किया, तो वो है कम्युनिकेशन और लोगों के साथ बात करना। तो अभी बातों में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि मैंने जो मेरा दिल करता था कि मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिले आरजे बनने का, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक जब मिली मैंने इसका तकरीबन एक साल वेट किया। तो अभी रिसेंटली ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो आज मेरा तीसरा शो है। तो बहुत सारी इसमें शॉर्ट कमिंग्स और कमियाँ होंगी, और आपको सुनने में अल्फाज भी मेरे फंबल कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब हम डिग्री ले लेते हैं तो एक्सपीरियंस कैसे आए? एक्सपीरियंस का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप किसी फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो उधर शुरू के 6 माह या साल सिर्फ आप गलतियाँ करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप उन मिस्टेक से कुछ ऐसी चीज़ सीख लेते हैं जिससे जो है ना काम सही से होने लग जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस आई थिंक। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो जिधर भी इंटरव्यूज़ के लिए जाते तो पहले तो ये बात है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इंटरव्यू देने की जो है ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि एक्चुअली व्हाट इज़ इंटरव्यू एंड हाउ वी कैन कंडक्ट इट। तो जब हम अपनी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंप्लीट करके तो रियल वर्ल्ड मार्केट में आते हैं तो हमें बहुत सारी जो है वो हेजिटेशन भी होती है और बहुत सारी जो है परेशानियों के मराहल में से भी गुजरना पड़ता है। तो मैंने फिर जो है ना इसमें थोड़ी रिसर्च की, मैंने कहा यार कि क्या वजह है कि जब हम बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन और एजुकेशन वगैरह लेके मार्केट में आते हैं तो उनको प्रॉपर वो जॉब्स नहीं मिलती जैसी उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी हुई होती हैं अपनी डिग्री को लेकर। तो मसला ये होता है जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं वो भी गलतियाँ कर करके और जो अपनी गलतियों के एक्सपीरियंस से और अपने मेंटोर्स की जो है वो सुपरविजन में ये सारी चीज़ें अचीव करते हैं। तो एक वक्त आता है कि जब आप बहुत सारा मुश्किल काम जो अपीनेटली मुश्किल लगता है तो उसको भी बड़ी आसानी से आप करने लग जाते हैं। तो वो तभी होगा कि जो बिजनेस ऑनर्स हैं या जो भी फैक्ट्रीज हैं कोई भी फर्म है तो उनको चाहिए कि नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि 1-2 घंटे या इंटर्नशिप का कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो डिग्री है उसके बाद जो लोग जो उन्होंने लेटेस्ट एजुकेशन अक्वायर की है तो उसको लेके चलें और उनको जो काम करने के मौके मिलने चाहिए। ये जो एजुकेशन और साथ साथ में जो एक्सपीरियंस की बातें तो चलती रहेंगी और साथ साथ हमारा जो मेन फोकस है वो एंटरटेनमेंट है। तो एंटरटेनमेंट के लिए एक सॉन्ग की वो जो फरमाइश हमें पहुंची है तो उसको हम अभी प्ले करेंगे कुछ ही लम्हों में।
अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपके पास मौजूद है, तो उस पर आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं और जो है अपना जो पैगाम है वो लिखकर भी भेज सकते हैं, उसको हम ऐड करेंगे और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे।

0: ओके जी, हम अभी लौट के आ चुके हैं। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग था और हमारे बचपन की बहुत सारी यादें इस सॉन्ग के साथ मुंसलिक हैं। तो बचपन में जब भी ये रेडियो पे या मतलब किसी भी इक्विपमेंट पे ये सॉन्ग प्ले होता था तो एक बिजली सी दौड़ती थी जिस्म में। तो ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। अभी हम बात कर रहे थे एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस की। एक छोटा सा वो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो प्रोफेशनल जो जिस फील्ड से मैं मुंसलिक हूँ वो ऑटो टेक की वो रैपिंग और टिंटिंग का काम है, गाड़ियों के शीशे वगैरह टिंट करना और गाड़ियों को रैप करना। जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो एक एक चीज़ एक एक पॉइंट जो है नोट करते करते तकरीबन 1.5-2 साल में मैंने ये सारा काम सीखा। लेकिन फिर भी जो है वो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी। तो एक दिन मुझे एक क्लाइंट मिले तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ आपने चलना है। तो मैंने एक जगह पे वो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है होम विंडो का, तो उधर हमने फ्रॉस्ट पेपर इंस्टॉल करना है, तो क्या आप कर लेंगे? तो वक्ती तौर तो मैंने बोल दिया कि मैं यस आई विल डू इट। तो जब हम गाड़ी में जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ तो उन्होंने रीकन्फर्म किया कैन यू डू इट। मैंने सोचा मुझे वो काम आता तो नहीं था, मैंने कहा ये ना हो कि मैं बोलूँ कि ये काम मुझे नहीं आता तो वो मुझे गाड़ी से नीचे उतार दें। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स वी रीच एट आवर डेस्टिनेशन एंड उन्होंने जो है बोला कि ये वाला काम है तो अभी आपने करना है, ये वाली आप जॉब डन करेंगे। तो जब उन्होंने वो पेपर प्रिपेयर किया और वो उसकी जो लेंथ थी वो तकरीबन 5 feet by 7 feet थी, तो इतना बड़ा जो पेपर है वो कभी हमने यूज़ नहीं किया था अपनी वो जो ऑटो फील्ड में। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, मुझे उधर एक नॉलेज तो था जैसे डिग्री होती है, दो चीज़ों की कमी थी, स्किल और एक्सपीरियंस की। और मेरे जो हाथ हैं वो जब मोबाइल पे कॉल आती है उससे भी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे थे, तो काम तो करना है अपने अपनी जो है वो डेडिकेशन को प्रूव करने के लिए कांपते हाथों के साथ भी हमें काम करना पड़ता है। तो फिर मैंने वो एक बड़ी मुश्किल से अपने आप को असेंबल किया और प्रिपेयर किया कि यस आई विल डू इट। तो जब मैंने वो जॉब डन की तो उसमें तकरीबन उन्होंने बोला कि आपका जो एक्सपीरियंस आपको इस काम की एक समझ तो है लेकिन इसमें छोटी छोटी जो है ना वो कमियां हैं, वो एक आम बंदे को समझ तो नहीं आएंगी लेकिन जो फील्ड का बंदा है उसको इधर वो जो है ना ये आपका तकरीबन 10% आप में शॉर्ट कमिंग्स हैं तो ये इम्प्रूव होने वाली हैं। तो एक हमारा जो क्या कहते हैं कि हमारा रवैया ऐसा है, इंक्लिनेशन ऐसा है कि जब हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो हमें बड़ा वो जो है बुरा फील होता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारे नए काम हमें सीखने पड़ते हैं और अभी तो दुनिया बहुत ही तेज़ स्पीड से चल रही है। आई रोज़ एवरी सेकेंड जो है ना वो चेंजिंग बड़ी रैपिड स्पीड पे हो रही है, तो साथ साथ हमें एजुकेशन और न्यू आने वाले स्किल्स हैं उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए। आगे जी एक बड़ी प्यारी सी ननी मुनी सी कमर्शियल ब्रेक आ रही है, तो उसके उस पार आपके आपके साथ फिर रब्ता होगा। तो अभी अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और आप कोई भी फील्ड का काम कर रहे हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसमें जो मुश्किलात हैं वो कैसी हैं और क्या नए लोगों को टीनेजर्स को उसके बारे में स्टडी और उसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे नंबर पर लाइव
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

और जब मेरे फॉरेन क्लाइंट्स आते थे यूके से और यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका कनाडा से, तो जब मैं उनके साथ कम्युनिकेट करता था वो, और हमारा स्टाफ जो बड़ी अस्टोनिशली मुझे देखता था और कहते थे कि आपको ये लैंग्वेज कैसे आती है। तो मैंने जब भी अपने से जूनियर लोगों से बात की है, और मैंने हमेशा उनके साथ जो है ना वो एप्रिसिएशन वाला रवैया रखा है कि एक तो आप किसी का रिज़्क जो है वो लाइवलीहुड है वो आप किसी से छीन नहीं सकते ना किसी को दे सकते हैं, जो आप दे सकते हैं वो रिस्पेक्ट है और हेल्प कर सकते हैं और मोटिवेट लोगों को कर सकते हैं, ये आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं ये वो चीज़ है। अभी एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग जो है ना उसको प्ले करेंगे अपनी इस शो में,

ओके जी, हम अभी लौट के आ चुके हैं। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग था धूम टू फिल्म का, आई होप यू एंजॉयड इट। मैं जी आपके साथ अपना रेस्टोरेंट जो फर्स्ट जॉब थी उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। उधर मेरे पास क्वालिफिकेशन तो थी रेलिवेंट, लेकिन एक्सपीरियंस और जो स्किल था उसको जॉब को लेके चलने का वो नहीं था। लेकिन बहुत पुराने लोग थे उधर काम कर रहे थे, उनके पास जो है वो स्किल तो थे और एक्सपीरियंस भी था, लेकिन लेटेस्ट जो एजुकेशन रिक्वायर्ड थी अकॉर्डिंग टू दैट ईयर वो उनके पास नहीं थी। तो तीन चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन हर बंदे के पास, किसी के पास डेढ़ चीज़ थी और किसी के पास दो चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ में, एक जो स्किल था उसमें वो लैग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लेवल अचीव नहीं कर पा रहे थे जो वो डिज़र्व भी करते थे, और प्लस जो है वो उसको डिटरमाइन भी करते थे कि ये इधर मुझे पहुँचना है। लेकिन उसको उधर पहुँचने के लिए आपके पास जो है वो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट एक्सपीरियंस और जो है ना वो उसके उन दोनों चीज़ों को लेके चलने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होता है तो वो नहीं था कुछ लोगों के पास, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मैं भी उन्हीं में शामिल था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे बहुत प्यारे क्लाइंट आए, तो उन्होंने साइड ऑर्डर दिया, तो जब ऑर्डर दिया तो उसमें एक मोल्टन लावा केक था। वो थे हमारे रेगुलर कस्टमर, तो वो कहते हैं कि आज जो है वो जो केक है वो खट्टा है। तो 50-70% जो हमारा स्टाफ था तो उसको वो जो खट्टे की इंग्लिश है वो उसका प्रॉपर वर्ड है वो भी उसका नहीं पता था। तो मेरे साथ जो टॉप मैनेजमेंट के चार लोग थे, हम उधर बैठे हुए थे, तो उन्होंने वेटर को बुलाया कि आप जो है ना इसको चेक करें, ये केक खट्टा है। तो फिर क्या हुआ कि वो वेटर को जितनी उसकी ट्रेनिंग थी वो कहता था कि अभी जो है ना आपको एक नया जो है वो केक सर्व कर देते हैं, आप थोड़ा सा टाइम दें। तो हमारी जो क्लाइंट थी वो कहती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं फिर डिस्काउंट दे देते हैं, तो कहती हैं मुझे पैसों की कमी भी नहीं है। तो आपने ऑलरेडी मुझे 5 मिनट लेट सर्व किया है, तो आपने मेरे 5 मिनट ज़ाया किए हैं। वेटर का जो एक्सपीरियंस था वो 8 साल का था, तो वो तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैनेजर, शी सेड इन फ्यूरियसली शी सेड आई वांट मैनेजर। जो मैनेजर साहब थे उनका 18 ईयर का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो कह रहे थे कि ये लेडी मेरे से हैंडल नहीं होगी और अभी जो है वो एक किस्म का ब्लंडर हो चुका है, तो आई विल नॉट अटेंड इट। वो भी सैड मार गए, पीछे रह जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ, हालांकि उनका कोई काम नहीं बनता कि फ्लोर पे आके वो डील करें। तो उनका भी तकरीबन अराउंड अबाउट 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन जो हमने इंटरनेशनल, मैंने जो क्वालिफिकेशन ली थी उसमें जो सबसे मेन चीज़ सिखाई जाती है कि क्लाइंट को कैसे डील करना है। फिर ऐसा हुआ कि वो भी जो कहते हैं कि मैं एक तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हूँ और दूसरा जो है मेरा काम नहीं बनता, तो मैं भी इस जो क्लाइंट को अटेंड नहीं करूँगा। तो वो तीन लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे वो एक किस्म के वो साइड मार गए, साइड पर हो गए। तो पीछे फिर मैंने न्यूली जो है अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था इसका, होटल मैनेजमेंट का, तो मैंने कहा यार मैंने इतनी जो है ना वो फीस भी अदा की हैं और बड़ी दिन रात मेहनत की है, तो आज जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया। ये अभी मैं सोच ही रहा था, तो उतनी देर में जो चीज़ बनाता है उसको बनाने वाले से बेहतर चीज़ को कोई भी नहीं समझता, और जो चीज़ यूज़ करता है तो वो सबसे जो एक्सपर्ट बंदा होता है वो फील्ड में या किसी भी सिनेरियो में जो यूज़र होता है वो सबसे बेटर जो है वो चीज़ को समझता है कि आया कि इसमें जो क्या कमी है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है।
तो वो जो है वो बेकरी शेफ भी आ गए वो फ्लोर पे, हालांकि उनका भी काम नहीं था फ्लोर को आगे मैनेज करना, तो वो उन्होंने टेबल को अप्रोच किया और वो कहते हैं कि मुझे जो है ना, हम तो मैम इसी तरह बनाते हैं और हमारी जो रेसिपी भी है वो भी सेम है, तो प्रॉब्लम किधर है। तो वो मैम और बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, कहती हैं कि कोई भी आप में ऐसा बंदा नहीं है जो प्रॉपरली मुझे गाइड कर सके कि एक्चुअली हुआ क्या है इस केक के साथ। हालांकि वो कहती हैं कि मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ और जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज जो है ना वो टेस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्क नहीं है। और उन्होंने वो जो है वो टेबल पे एक जो कहते हैं कि जोर से मतलब हाथ मारा, और जिसकी वजह से वो पूरा रेस्टोरेंट पैक चल रहा था, पी कार थे रेस्टोरेंट की, तो सारे लोगों की जो नज़रें थी वो उसी रेस्टोरेंट उसी टेबल पे थी, तो मेरे भी हाथ पांव कांप रहे थे। लेकिन मैंने बोला कि अभी टाइम आ गया है कि अपनी जो है ना क्वालिटी और अपनी जो एजुकेशन की क्वालिटी है और अपने आप को प्रूव करने का अभी मौका मिला है, तो लेट्स ट्राई इट। फिर मैंने वो अपने उस क्लाइंट को जो है अप्रोच किया और अच्छे तरीके से उनके साथ ग्रीटिंग की, और मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड मैम यू आर राइट, आई चेक द केक, इट इज़ सॉर। तो वो कहती हैं कि मैं पिछले 15 मिनट से यही जो है ना आपके पूरे ओवरऑल स्टाफ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि केक खट्टा है। तो कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा मैम फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर राइट, और जो मसला ये है कि हमारी जो रेसिपी है इज सेम और हमारा जो कुकिंग मेथड है वो भी सेम है, लेकिन मसला ये है कि सम टाइम हमारे जो वेंडर्स हैं वो चेंज होते हैं, तो उनके इंग्रेडिएंट भी सम टाइम चेंज होते हैं जो वो हमारे टेस्ट पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से मे बी यू आर फीलिंग द केक इज सॉर, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ मिस्टेक एंड आई विल मेक श्योर दीज थिंग्स विल नेवर रिपीट अगेन। फिर इसी तरह मैंने जो अपनी क्वालिफिकेशन थी विदाउट एक्सपीरियंस एंड स्किल उससे उस क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश की, और वो किसी हद तक 80% वो जो है सेटिस्फाई भी हुई, और जो है ना वो नेक्स्ट केक उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट ओवरऑल आपकी डीलिंग मुझे अच्छी लगी है, तो जिसकी वजह से मैं जो है ना वो कंप्लेन को जो है ना वो आगे फॉरवर्ड नहीं करूँगी। अदरवाइज़ जो है हमारे वो हर रेस्टोरेंट में होता है कि पर्सनल रिव्यू जो कस्टमर देते हैं तो वो ऑनर भी देखते हैं और ओवरऑल मैनेजमेंट जो अपर मैनेजमेंट होती है वो भी देखती है। तो उस दिन मैंने जो है ना हिम्मत करके अपनी जो है ना वो जितनी भी मेरी काबिलियत थी मैंने उसको शोकेस किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हालांकि मेरी जो उधर जॉब थी वो थी स्टाफ को ट्रेनिंग देनी और जो बताना कि बेसिकली हॉस्पिटल इंडस्ट्री है क्या और इसमें लोग कैसे काम करते हैं इंटरनेशनली। फिर उस दिन मुझे जैसे हमारा ये टॉपिक था कि एजुकेशन स्किल और एक्सपीरियंस, उस दिन मुझे समझ आई कि खाली एजुकेशन भी नहीं चलेगी, ना अकेला स्किल चलेगा और ना ही एक्सपीरियंस चलेगा। वी नीड कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स टू वर्क एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? अगर ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो बहुत सारे लोगों के करियर में वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। अभी मैं जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो नए सुनने वालों के लिए एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 0115-7100971 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप अपनी जो कॉल है वो भी कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और जो आप जो राइट अपना जो मैसेज है वो भी राइट डाउन करके और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा जो मेन टॉपिक है वो और इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद है वो है एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से अभी हम एक बहुत प्यारा सॉन्ग है वो उसको प्ले करेंगे अपनी इस शो में।
आप अपनी मर्जी का सॉन्ग जो है वो किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आपके पास है, तो जल्दी से जो है ना अपना वो जो सॉन्ग आपने सुनना है वो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको प्ले करेंगे।

ओके जी, वेलकम बैक। अभी हम कमर्शियल ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अभी आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब। जैसा कि हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस। उसमें एक और चीज भी ऐड करते चलें, वो है अपॉर्चुनिटी। इन तीन चीज़ों में तो थोड़ी बहुत वो जो है वो गैप रहती ही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास अपॉर्चुनिटी से टोटली जो है वो बेनिफिट लेने की काबिलियत होती है। लेट्स सपोज के सुबह एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि सुबह 10,000 MBBS डॉक्टर रिक्वायर्ड है। अल्लाह की कसम ऐसी सारे जड़ा है उहदे च फाल बिल्कुल नहीं करते। अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलती है जिनके पास कोई किसी काम का एक्सपीरियंस होता है और जो वो बड़े लंबे अरसे से वेट कर रहे होते हैं अपने राइट टाइम मूवमेंट का, तो जो ऊपर वाली ज़ात है वो बिल्कुल उनके लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती रहती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप में इन तीनों में से एक्सपीरियंस की और जो है ना स्किल की कमी होती है, जिसकी वजह से वो आपको डिज़ायर्ड जॉब नज़र आ तो रही होती है और आप बिल्कुल क्वालिफाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो जिसने आपको काम पे रखना है या वो कोई भी फर्म है, तो वो बिज़नेस जो होता है वो बेसिकली प्रॉफिट के लिए होता है, ना कि लोगों की हेल्प करने के लिए। ये एक बड़ी एक सख्त सी बात है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। तो अभी हम हमारे पे और आप लोगों पे जो सुनने वाले हैं उनमें यही चीज़ जो है ना एक लगन होनी चाहिए कि डे आफ्टर डे वी आर टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स and we will do such a things which can help us to gain new knowledge. We will learn new skills, जो नए किस्म की problems आ रही हैं, क्योंकि जो आज से 100 साल पहले लोग जिंदा थे उनके और मसले मसाइल थे। वो जो है वो मतलब घोड़ा गाड़ी और इस तरह की जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते थे, कोयले वाली गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, तो उनको उससे रिलेटेड ही लोग चाहिए थे। अगर आज भी किसी के पास इस तरह का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस तो होगा लेकिन वो आज चलेगा नहीं। जैसा कि मुझे बुक रीडिंग का बड़ा शौक है और लोगों नए नए लोगों के साथ बातचीत करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरी जो पर्सनैलिटी है वो यही है कि अजनबी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और अभी इस तरह मैंने सोचा कि मुझे जो है ना मेरी ये वाली जो स्किल है, ये जो मैं करना चाहता हूँ, वो किधर जाके इम्प्रूव हो सकता है। तो फिर मैंने जो सबसे मेन चीज़ जो आवाज़ के जादूगर होते हैं वो होते हैं RJ रेडियो जॉकीज। इनको बाय फेस लोग नहीं जानते, जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन आप मुझे नहीं देख पा रहे कि मैं दिखता कैसा हूँ। और मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैंने रिसेंटली 1 साल वेट किया है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे एक अच्छे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फजा 97.1 FM एंड डैब। इन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। अपॉर्चुनिटी तभी मिली है कि जब मेरे पास डेडिकेशन थी, लगन थी, थोड़े बहुत अल्फाज थे, और बहुत सारी जो है ना वो मैं बातें करना चाहता हूँ, लेकिन जो माइक को फोबिया है, माइक को फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो आज भी अभी भी मुश्किल है। तो अभी तो आप लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आप लोगों का फीडबैक और अपने जो मेरे असातज़ा हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं, उनकी उनका सब्र बेसिकली। तो जो बंदा काम कर रहा होता है ना, वो कहता है यार इतना ईजी काम है तो ये क्यों नहीं कर पा रहा, लेकिन जो नया बंदा होता है वो कहता है कि यार ये इतना मुश्किल काम है मैं कैसे करूं। बोथ द पीपल्स आर एक्सट्रीम एंड। तो इसी बीच में जो है ना जब इम्प्रूवमेंट आती है तो वो इसी तरह तभी आएगी जब वो सिखाने वाले भी जो है वो एक पेशेंस से काम लेंगे और सीखने वाले भी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो इसको करने की कोशिश करेंगे। तो एक वक्त आता है कि जब दोनों चीज़ें अलाइन हो जाती हैं और एक अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं ये दोनों चीज़ें।
अभी एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये कह रहे थे कि अभी जो है ना वो आने वाला जो वक्त है उसमें स्किल डिजास्टर आएगा, स्किल शॉर्टेज आएगी और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आएगी। तो आपको भी सुनने को चीज़ें मिलती होंगी और आप डेली बेसिस पे ये जो फेस भी करते होंगे। अभी जो एडवर्टीजमेंट आती है वो ये नहीं कहते कि हमें इतने लोग रिक्वायर्ड हैं, वो कहते हैं कि इस स्किल की इतनी इतनी शॉर्टेज है, इतने इतने हमें इसके फील्ड में लोग चाहिए। और जो अभी सिनेरियो चल रहा है वो अभी हम थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग में अगर वो थोड़ा सा कीन इंटरेस्ट के साथ देखें तो हमारी जो टीन एजर्स हैं और हमारे जो छोटे बच्चे हैं तो वो क्या हो रहा है कि वो उनका जो सबसे जो लर्निंग फेज है और सबसे जो उनका कीमती टाइम है अभी उनकी लाइफ का, तो वो सोशल मीडिया और इन चीज़ों में जो है वो फंस चुके हैं। तो बेसिकली अभी जिन लोगों की एज 30 से 45 के बिटवीन है वो तो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद वो लोग और एजड हो जाएंगे और वो फिजिकली काम नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो उन जिन लोगों ने उनको रिप्लेस करना था, उनसे सीख के तो उस फील्ड में चलना था, तो वो लोग फील्ड में आ नहीं रहे। क्या आपको भी ऐसे लगता है? जब पैस जो हमारी है, क्योंकि इंसान वाहिद वो ऐसी एक लिविंग क्रिएचर है जिसको सुबह उठ के काम करना पड़ता है और जो पैसों की दौड़ है उसमें शामिल होना पड़ता है। बाकी जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका जो प्रोविजन है, उसका रिज़क है और खाने पीने का जो एहतमाम है वो कुदरत ने कर रखा है। हमारा भी जो है वो एहतमाम तो है, लेकिन इसमें हमारी ख्वाहिशात भी हैं। तो जो जितने भी अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं वो गाड़ियाँ और फैशन और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो जस्ट एक सादा फूड फूड चेन पे वो रिलाई करते हैं और अपनी लाइफ जो है वो सादगी के साथ गुजारते हैं। लेकिन हम इंसान हैं तो हमें जो है ना वो हर चीज़ पे, एक तो हम अशरफुल मखलूकात हैं और जो क्रिएटर की सबसे एक मास्टरपीस हमें कंसिडर किया जाता है और हम खलीफा भी हैं ज़मीन पे। तो जब हम करते हैं कि लोगों के साथ उठते बैठते हैं और अपनी सराउंडिंग में अपना एक पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए एक हमारी एक इंसान की पहचान उसकी गाड़ी से, उसके पहनावे से और उसकी एजुकेशन, उसका वे ऑफ अर्निंग और इन चीज़ों से उसको पहचान मिलती है, और कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट भी है वो इन्हीं चीज़ों से ही मैयर करके उसको दी जाती है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें हैं वो कंक्लूड करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग की फरमाइश है उसको जो है ना वो प्ले करते हैं, फिर जो है ना इन चीज़ों को कंक्लूड करेंगे और जो एक दो मैसेज रिसीव हुए हैं तो उनको भी साथ ऐड करके तो इसको कंक्लूजन में लेके आएंगे। मेरा और आपका साथ मज़ीद जो है वो 20 से 22 मिनट रह गया।

सो हरी, आप जो आप अपना एक्सपीरियंस या कोई लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो उस पर आप जो है लाइव कॉल भी कर सकते हैं और अपना जो है ना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं।

ओके जी, हम अभी लौट के आ गए हैं। बहुत प्यारा सॉन्ग था और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था 10-12 साल पहले, एक दिलरुबा। आज हम बात कर रहे थे एजुकेशन स्किल और एक्सपीरियंस पे, और इसके साथ साथ अब हमने अपॉर्चुनिटी पे भी बात की। और एक और चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, तो राइट टाइम पे राइट सिचुएशन में बात करना जो है ना, वो सबसे मेन चीज़ है। बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स, ऐसे मौके आते हैं जब हमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। और घर पे आके जब हम कहीं फ्री बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमें उधर ये बात कर लेनी चाहिए थी, और जब हम बात वो नहीं कर पाते तो कितने दिन हमारा मूड ख़राब रहता है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस और जो है ना वो बात मौके पर कर लेना कितनी ज़रूरी है। एक बार फर्स्ट टाइम मैं जब मैंने फ्लाइट ट्रैवल किया एयरप्लेन पे, तो मैं पाकिस्तान से यूएई के लिए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जब हम दुबई के लिए हम रवाना हुए, तो रास्ते में मेरा एक ईयरबड जो है ना वो गिर गया था, लेकिन था वो कनेक्टेड मेरे मोबाइल के साथ। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि अभी जब फ्लाइट उधर जाके टेक ऑफ हुई जो है ना वो लैंड होगी, और लैंड होने के बाद वो सारे लोग जा रहे थे, तो फिर मैं इस सिचुएशन में वो था व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि अभी मैं क्या करूं, कि अभी उसको ढूंढ लिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी है कनेक्टेड तो थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। जब वो मैं ढूंढने के लिए जब सीट्स के नीचे देख रहा, तो एयर होस्टेस ने मेरे साथ अप्रोच किया, कहते हैं कि सर क्या इशू है। मैं उनको ये नहीं बता रहा था कि एक छोटी सी चीज़ है, उसके लिए मैं जो है ना वो थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो ज़ाया कर रहा हूँ या टाइम ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी फियांस है, उसने मुझे रिंग दी थी, तो वो रिंग आई थिंक इधर गुम हो गई है। दे स्टार्टेड टू फाइंड इट आउट एंड वो मेरे साथ ढूंढने लग गई, और मैं तकरीबन 6 चेयर्स बैक रो में गया हूँ, तो वो उधर ना वो उसकी लाइट्स जो है वो ग्लिटर कर रही थी, तो मैंने उसको उठा के अपनी जेब में डाल लिया, उनको पता नहीं चलने दिया। और फिर मैंने कहा चलो लेट्स गो, तो वो कहती हैं कि रिंग ना ढूंढ लें। मैंने कहा वो अभी मेरी फियांस जिंदा, तो शी विल गिव मी अगेन, सो ये बड़ा बिजी एयरपोर्ट है तो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो कहने का मकसद है कि अभी जो हमारी लाइफ है इसमें 5 चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं, एजुकेशन, स्किल और कॉन्फिडेंस, और इसके साथ अपॉर्चुनिटी, और जो है ना वो कॉन्फिडेंस रिटेन करना। तो आज का जो शो है वो बहुत ही मुझे तो बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मेरा थर्ड शो है और काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, और आपके साथ ये शो करके मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तो नेक्स्ट इसी टाइम कल आपसे मुलाकात होगी, तो

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: और बचतानी शाम जहां अश्क मेरे नाथ सुनाए तो जब क्या अ ब्लेस्ड इवनिंग ऑफ नाथ लव एंड रिमेम्बरेंस महफिले मिलादुन नबी मंडे 7th सितंबर 2026 एट 6 पीएम ऑनवर्ड्स। इस महफिल में दुनियाए नाथवानी के अजीम और नामवर सनाख्वान मुस्तफा शामिल हो रहे हैं। कारी शाहत महमूद कादरी, सैयद हसनुल्लाह हुसैनी, हाजी हुसैन यूसुफ, वसीम अब्बासी और तौफीक अहमद तौफीक नकाबत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुनैन मसूद, तो भूलिएगा मत, खुशु व खुजू के साथ बावजू होकर इस बाबरकत शाम का हिस्सा बने अपने हलका व अहबाब के साथ, क्योंकि अश्क जब तक वजू नहीं करते हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। वेन्यू है एक्सेलसियर नवाब, 527 लोटस रोड, नॉटिंघम, NG51EL। मीडिया पार्टनर फजा 97.1 FM।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
0: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
0: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76.
6: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अहले नॉटिंगम को जिसने ईद मिलादुन नबी मुबारक, और इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ने के लिए एक्सेलसियर नवाब ने सजाई है एक खूबसूरत रूहानी और वजदानी शाम, जहां अश्क मेरे नाथ सुनाए तो जब क्या। अ ब्लेस्ड इवनिंग ऑफ नाथ लव एंड रिमेम्बरेंस, महफिल मिलादुन नबी, मंडे 7th सितंबर 2026 एट 6 पीएम ऑनवर्ड्स। इस महफिल में दुनियाए नाथवानी के अजीम और नामवर सनाख्वान मुस्तफ़ा शामिल हो रहे हैं। कारी शाहत महमूद कादरी, सैयद हसनुल्लाह हुसैनी, हाजी हुसैन यूसुफ, वसीम अब्बासी और तौफीक अहमद तौफीक नकाबत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुनैन मसूद, तो भूलिएगा मत, खुशु व खुजू के साथ बावजू होकर इस बाबरकत शाम का हिस्सा बने अपने हलका व अहबाब के साथ, क्योंकि अश्क जब तक वजू नहीं करते हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। वेन्यू है एक्सेलसियर नवाब, 527 लोटस रोड, नॉटिंगम, ND51EL। मीडिया पार्टनर फजा 97.1 FM।
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Huzzah 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: bigger and better the radio station for people who love music।
6: बजाना 87.1 FM।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा.
2: You are listening to Radio Fazer on 97.1 FM.

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, अहले नौटियों को जिसने ईद मिलादुन नबी मुबारक। और इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ने के लिए एक्सेलसियर नवाब ने सजाई है एक खूबसूरत रूहानी और वजदानी शाम, जहां अश्क मेरे नाथ सुनाए तो जब क्या। अ ब्लेस्ड इवनिंग ऑफ नाथ लव एंड रिमेम्बरेंस, महफिल मिलादुन नबी, मंडे 7th September 2026 at 6 PM onwards। इस महफिल में दुनियाए नाथवानी के अजीम और नामवर सनाख्वान मुस्तफ़ा शामिल हो रहे हैं। कारी शाहत महमूद कादरी, सैयद हसनुल्लाह हुसैनी, हाजी हुसैन यूसुफ, वसीम अब्बासी और तौफीक अहमद तौफीक नकाबत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुनैन मसूद, तो भूलिएगा मत, खुशू व खुजू के साथ बावजू होकर इस बाबरकत शाम का हिस्सा बने अपने हलका व अहबाब के साथ, क्योंकि अश्क जब तक वजू नहीं करते हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। वेन्यू है एक्सेलसियर नवाब, 527 लोटस रोड, नॉटिंघम, ND51EL। मीडिया पार्टनर फजा 97.1 FM।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
3: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
3: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76.
7: You are listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu, only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: It's commercial time.
1: महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अहले नॉटिंगम को जिसने ईद मिलादुन नबी मुबारक, और इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ने के लिए एक्सेलसियर नवाब ने सजाई है एक खूबसूरत रूहानी और वजदानी शाम, जहां अश्क मेरे नाथ सुनाए तो जब क्या। अ ब्लेस्ड इवनिंग ऑफ नाथ लव एंड रिमेम्बरेंस, महफिल मिलादुन नबी, मंडे 7th सितंबर 2026 एट 6 पीएम ऑनवर्ड्स। इस महफिल में दुनियाए नाथवानी के अजीम और नामवर सनाख्वान मुस्तफ़ा शामिल हो रहे हैं। कारी शाहत महमूद कादरी, सैयद हसनुल्लाह हुसैनी, हाजी हुसैन यूसुफ, वसीम अब्बासी और तौफीक अहमद तौफीक नकाबत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुनैन मसूद, तो भूलिएगा मत, खुशू और खुजू के साथ बावजू होकर इस बाबरकत शाम का हिस्सा बने अपने हलका और अहबाब के साथ, क्योंकि अश्क जब तक वजू नहीं करते हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। वेन्यू है एक्सेलसियर नवाब, 527 लोटस रोड, नॉटिंगम, NG51EL। मीडिया पार्टनर फजा 97.1 FM।
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आपके दिल की धड़कन, Radio Faza 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: हुए ओ जान दमन।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening to 97.1

0: You're listening to 97.1 FM. This is Radio Fazer.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
4: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.